एक और हसीन चीज है जिसे हम बार बार देखा करते हैं और वो है हमारे स्टूडियो की घड़ी। 9:51 हो चुके हैं 24 सेकंड्स के साथ और हम कहना चाहते हैं आपसे एक बात कि जो हमसे दूर हैं वो भी हमें प्यार करते हैं और जो पास है बस उनसे थोड़ी सी आस है, इतना ही फर्क है। अपनी हेल्थ के साथ साथ डिजिटल हेल्थ चेकअप करते रहें। पासवर्ड चेक, जीमेल चेक, कौन से ऐप हैं जो महीने भर से आपने यूज नहीं किए, आपकी लोकेशन को कौन से ऐप ट्रैक कर रहे हैं ये चेक कीजिए। बाकी आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ जुड़े रहिए।

और हम उसी प्यार के साथ आपको इनवाइट करना चाहते हैं ORMAS दिल्ली पॉपअप स्टोर 2026 के उद्घाटन का निमंत्रण है आपके पास। दिल्ली पॉपअप स्टोर 2026 का भव्य उद्घाटन होगा कल यानी कि 11 अगस्त को शाम 4 बजे DLF एवेन्यू साकेत मॉल A4 और इसके आयोजक हैं पंचायती राज एवं पेयजल विभाग ओडिशा सरकार के अंतर्गत ORMAS जिसका मुख्य उद्देश्य होगा ओडिशा के ग्रामीण कारीगरों स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण उत्पादकों द्वारा बनाए गए हैंडीक्राफ्ट हथकरघा और दूसरे उत्पादों को दिल्ली में प्रदर्शित और बढ़ावा देना। इससे ग्रामीण लोगों को बेहतर बाजार और रोजगार के अवसर मिलेंगे। आप आइएगा जरूर, बिल्कुल मत भूलिएगा शाम 4 बजे कल यानी कि 11 अगस्त को। म्यूजिकल दिल्ली है ये आपके साथ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा में आज चार विधेयक पेश किए जाने हैं। इनमें ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026, खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026, केरल नाम परिवर्तन विधेयक और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक शामिल हैं। राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैंकर बही साक्ष्य विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश करेंगी। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों और झारखंड सरकार के बीच तीन दौर की वार्ता

0: के बावजूद गतिरोध जारी है। छात्रों ने सरकार के प्रस्तावों को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है और आज विधानसभा का घेराव करने के अपने कार्यक्रम पर अडिग हैं। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले महीने की 31 तारीख को हासिल की गई यह ऐतिहासिक उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि देश की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। भारतीय नौसेना और अमरीकी नौसेना का संयुक्त विस्फोटक आयुध रोधक ईओडी अभ्यास 2026 आज से कोची स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू होकर 14 अगस्त तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं की ईओडी टीमों और विशेषज्ञ गोताखोरों के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ाना और पेशेवर सहयोग को सशक्त बनाना है। रूस ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए हिंद महासागर और भारत तक रेल मार्ग विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। रूसी उप प्रधानमंत्री मरार खुसुनुलिन ने कहा कि वैकल्पिक मार्ग होर्मोज जलडमरू मध्य और बोस्फोरस जलडमरू मध्य सहित दो रणनीतिक जलमार्गों से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायक हो सकते हैं। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार श्री खुसनोलिन ने कहा कि भारत तक पहुंच प्रदान करने के लिए तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से होकर गुजरने वाले रेल मार्गों का पता लगाया जा सकता है। ईरान की संसद ने होर्मुज़ जलडमरू मध्य और खाड़ी की सुरक्षा और सतत विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक रणनीतिक कार्य योजना की रूपरेखा को मंजूरी दे दी है। समिति के प्रवक्ता हसन कशकवी के हवाले से ईरान के स्थानीय मीडिया ने बताया कि इस योजना पर संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति में चर्चा हुई और बिना किसी विरोध के इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को 13 जुलाई को संसद में औपचारिक रूप से पेश किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प को नवीकृत करने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित हैं और वो भी ऐसे समय में जब हम अपनी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
1: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
2: संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देशभर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसे मंत्रालय ने अपनी तरह की पहली पहल बताया है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज विश्व सिंह दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत में एशियाई शेरों की संख्या 2020 में 674 से बढ़कर 2025 में 891 हो गई है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई जूनियर भारतोलन चैंपियनशिप में भारतीय भारतोलक महाराजन अरु मोंगपंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने स्नैच में 128 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 157 किलोग्राम भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 285 किलोग्राम का भार उठाया। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, झारखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में तेज हवाओं के साथ बारिश का भी अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has urged citizens to participate enthusiastically in the Har Ghar Tiranga movement and renew their collective resolve to contribute towards building a Viksit Bharat. In a social media post, Mr. Modi said, "Our tricolour is our pride and a constant source of inspiration to always give our best for the nation." The Prime Minister said he is glad that this year's efforts are dedicated to Vande Mataram and that too at a time when we are marking its 150th anniversary. In his Mann Ki Baat program on

0: से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए रेल मार्ग का प्रस्ताव रखा। चीन के पूर्वी तट पर तूफान डॉल्फिन के कारण तेज बारिश और हवाएं चल रही हैं, बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी जारी। और ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। भारत ने बोलिविया की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा क्षमता बढ़ाने के लिए जीवन रक्षक और आवश्यक दवाओं की 8 मीट्रिक टन खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारत एकजुटता और साझा प्रगति के माध्यम से सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर है। भारतीय नौसेना और अमरीकी नौसेना का संयुक्त विस्फोटक आयुधरोधी ईओडी अभ्यास 2026 आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू होकर 14 अगस्त तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं की ईओडी टीमों और विशेषज्ञ गोताखोरों के बीच अंतर संचालनीयता बढ़ाना और पेशेवर सहयोग को सशक्त बनाना है। 5 दिन के इस अभ्यास में विषय विशेषज्ञ विनिमय, क्रॉस प्रशिक्षण, उपकरणों के प्रदर्शन तथा स्थिति आधारित व्यावहारिक अभ्यास शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि भारतीय नौसेना और अमरीकी नौसेना 2005 के बाद संयुक्त रूप से साल्वेज और ईओडी अभ्यास आयोजित कर रही हैं। इन दोनों नौसेनाओं का ये विशिष्ट द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास का 8वां संस्करण है। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन आज से शुरू होने वाली 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर मॉरिशस जा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा भारत द्वारा मॉरिशस के साथ द्विपक्षीय समुद्री सहयोग और रक्षा संबंधों को मजबूत करने के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। यात्रा के दौरान वे मॉरिशस सरकार के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करेंगे और समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग, क्षमता निर्माण और सैन्य सहयोग जैसे पारस्परिक हित के मामलों पर चर्चा करेंगे। अमरीकी केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा है कि अमरीकी नौसेना बलों ने ईरान के खिलाफ अमरीकी नाकाबंदी लागू करने के प्रयासों के अंतर्गत 55 वाणिज्यिक जहाजों का मार्ग बदल दिया है।
1: सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 20 से अधिक अमरीकी युद्धपोत सैन्य अभियानों में सहायता के लिए पश्चिम एशिया में तैनात हैं। इनमें नाकाबंदी को लागू करना भी शामिल है। सेंटकॉम के अनुसार 9 अगस्त तक अमरीकी बलों ने 55 वाणिज्यिक जहाजों का मार्ग बदल दिया, 2 को निष्क्रिय कर दिया और 2 अन्य जहाजों पर चढ़कर अनुपालन सुनिश्चित किया। ये ताजा जानकारी पहले की इसी तरह की समुद्री कार्रवाई की रिपोर्टों के बाद आई है। सेंटकॉम ने बताया कि मानवीय सहायता ले जा रहे 30 से अधिक जहाजों को नाकेबंदी से गुजर की अनुमति दी गई है। समाचार कक्ष से विश्व दर्पण के लिए मैं मुकेश कुमार बल।
0: ईरान की संसद ने होर्मुज जलडमरू मध्य और खाड़ी की सुरक्षा और सतत विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक रणनीतिक कार्य योजना की रूपरेखा को मंजूरी दी है। समिति के प्रवक्ता हसन खशकवी ने हवाले से ईरान के स्थानीय मीडिया ने बताया कि इस योजना पर संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति में चर्चा हुई और इसे मंजूरी दे दी गई। इस विधेयक को 13 जुलाई को संसद में औपचारिक रूप से पेश किया गया। इस बीच ईरान और ओमान होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए नए मार्ग के निर्धारण को लेकर बातचीत कर रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खमेनेई ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के पूर्व प्रमुख मोहसिन रेजाई को देश की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। उन्होंने मोहम्मद बाकिर जोलगद्र की जगह ली है। ये पद पहले अली लारिजानी के पास था, जिनकी मार्च में अमरीका इसराइल के हमलों में हत्या कर दी गई थी और उसके बाद मोहम्मद बाकिर जोलगद्र इस पद पर थे। रूस ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए हिंद महासागर और भारत तक रेल मार्ग विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। रूस के उप प्रधानमंत्री मराट खुसनुलिन ने कहा कि वैकल्पिक मार्ग होर्मुज जलडमरू मध्य और बोस्फोरस जलडमरू मध्य सहित 2 रणनीतिक जलमार्गों से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायक हो सकते हैं। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार श्री खुसनुलिन ने कहा कि भारत तक पहुंच प्रदान करने के लिए तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से होकर गुजरने वाले रेलमार्गों का पता लगाया जा सकता है। ये प्रस्ताव पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच आया है, जिसमें होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर होने जाने वाले जहाजरानी यातायात को बाधित कर दिया गया है। विश्व दर्पण समाचार

0: आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। चीन में शक्तिशाली चक्रवात डॉल्फिन देश के पूर्वी तट पर पहुंच गया है। इसके चलते भारी बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं, साथ ही बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी भी जारी की गई है। एक रिपोर्ट।
1: चीन के मौसम विभाग के अनुसार तूफान ने झेजियांग प्रांत के युहुआ के पास दस्तक दी, जिसके केंद्र के पास हवा की अधिकतम गति 151 किलोमीटर प्रति घंटा थी। कम से कम 30,300 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जबकि शंघाई में लगभग 1,500 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। चीन पहुंचने से पहले डॉल्फिन तूफान जापान के दक्षिणी ओकिनावा प्रांत से गुजरा, जहां 6 लोग घायल हो गए और 50,000 से अधिक इमारतों की बिजली गुल हो गई। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम में बदलाव, जिनमें अधिक शक्तिशाली तूफान भी शामिल हैं, ज्यादा प्रभावित हो रही हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: पाकिस्तान में दक्षिणी वजीरिस्तान के जार मिलान इलाके में हथियारबंद हमलावरों ने दो बुजुर्ग आदिवासी नेताओं की गोली मारकर हत्या कर दी। पीड़ित गाड़ी से जा रहे थे, तभी डारोजांडा में अज्ञात बंदूकधारियों ने उन पर गोलियां चलाई। दोनों आदिवासी नेताओं को कई गोलियां लगी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। गोलीबारी के तुरंत बाद हमलावर मौके से भागने में कामयाब रहे। शिकागो में हुई कई गोलीबारी की घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रविवार को 8 गोलीबारी की घटनाएं हुई, इनमें से 3 लोगों की मौत हो गई और 9 अन्य घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत के महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने स्नैच में 128 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 157 किलोग्राम भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 285 किलोग्राम का भार उठाया। वियतनाम के हुआंग थाच ने 291 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। FIBA अंडर 18 एशिया बास्केटबॉल कप का आयोजन अहमदाबाद में 13 से 23 अगस्त तक किया जाएगा। भारतीय टीम का सामना ग्रुप चरण में कोरिया, जापान और कजाकिस्तान से होगा। भारत 14 अगस्त को जापान के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा। टूर्नामेंट का फाइनल 23 अगस्त को अहमदाबाद में खेला जाएगा। मुंबई की सोमैया विद्या विहार यूनिवर्सिटी में खेले गए FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वाश चैंपियनशिप 2026 के टीम इवेंट फाइनल में भारत और हांगकांग चाइना के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा, लेकिन गेम के बेहतर अंतर के आधार पर भारत को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। अमेरिका के यूजीन में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। बसंत कुमार मेघवाल और शाहनवाज खान चैंपियनशिप में हाई जंप और लॉन्ग जंप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। मौजूदा एशियाई अंडर 20 चैंपियनशिप बसंत कुमार मेघवाल ने 2.5

0: लेकिन गेम के बेहतर अंतर के आधार पर भारत को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। अमेरिका के यूजीन में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। बसंत कुमार मेघवाल और शाहनवाज खान चैंपियनशिप में हाई जंप और लॉन्ग जंप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। मौजूदा एशियाई अंडर 20 चैंपियनशिप बसंत कुमार मेघवाल ने 2.21 मीटर की सर्वश्रेष्ठ छलांग लगाकर पुरुषों की हाई जंप में रजत पदक अपने नाम किया। इन दो पदकों के साथ चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या 3 हो गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने बोलिविया की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा क्षमता बढ़ाने के लिए 8 मीट्रिक टन जीवन रक्षक और आवश्यक दवाएं भेजी। भारतीय और अमरीकी नौसेनाओं का विस्फोटक आयुध रोधी अभ्यास आज कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू। रूस ने भारत के लिए हॉर्मुस जलडमरू मध्य जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए रेल मार्ग का प्रस्ताव रखा। चीन के पूर्वी तट पर तूफान डॉल्फिन के कारण तेज बारिश और हवाएं चल रही हैं। बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी जारी। और ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. India dispatches 8 metric tons of life-saving and essential medicines to Bolivia to support its public healthcare capacity. Indian and US Navy's explosive ordnance disposal exercise to begin today at Southern Naval Command in Kochi. Russia proposes railway route to India to reduce dependence on strategically important maritime routes like Strait of Hormuz. Typhoon Dolphin brings heavy rain and strong winds in China's east coast, raises warning of floods and landslides. And Maharajan Arumuga Pandian clinches silver medal in men's 65 kg category at Asian Junior Weightlifting Championships in Tashkent. And now the news in detail. India has dispatched 8 metric tons of consignment of life-saving and essential medicines to Bolivia in support of its public healthcare capacity. External Affairs Ministry said in a social media post that India always stands ready for advancing cooperation through solidarity and shared progress. The Indian Navy, US Navy Explosive Ordnance Disposal EOD Exercise 2026 will be conducted at Southern Naval Command Kochi from today till the 14th of this month. The Defence Ministry said the bilateral exercise aims to enhance interoperability and strengthen professional cooperation between the specialist diving and EOD teams of the two navies. The five-day exercise will comprise subject matter expert exchanges, cross-training, equipment demonstrations and scenario-based practical exercises. India has crossed 300 gigawatts of non-fossil fuel-based installed electricity generation capacity. The landmark achievement was reached on the 31st of last month. It represents that India has achieved more than 60% of its 500 gigawatt target set for 2030. A report.
2: The Ministry of New and Renewable Energy said that the share of non-fossil fuel-based electricity capacity in the country's total installed electricity generation capacity has reached over 54%. It added that the growth in clean energy generation has been driven by strong contribution across sectors. In the total non-fossil fuel capacity of the country, solar energy has remained a key growth engine with around 165 gigawatts of installed capacity at present. With Anand Samar Singh for Akashwani News, Delhi.
1: Chief of the Naval Staff, Admiral Krishna Swaminathan, is on a four-day official visit to Mauritius starting today. The Ministry of Defence informed that the visit is part of India's continued engagement to strengthen bilateral maritime cooperation and deepen defence ties with Mauritius. During the visit, he will interact with senior leadership of the government of Mauritius and hold discussions on matters of mutual interest such as maritime security, defence cooperation, capacity building and military collaboration. More than 15 delegates from the BRICS Culture Working Group and the Culture Ministers Group visited the Bhimbetka rock shelters in Raisen district of Madhya Pradesh yesterday. Representatives from South Africa, Indonesia, Russia, China and other countries joined the visit. The delegates saw the South

साढ़े दस बज चुके हैं। दिल का मेल बॉक्स लेकर के हाजिर हो गए हैं हम आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे। तो आपके नगमे आपके नाम हमारे साथ। हार्दिक नमस्कार करते हुए हमें एक लिसनर कहते हैं कि एक नगमा सुनवा दीजिए। एक नहीं जनाब, हम तो यहाँ पे एक से बढ़कर एक नगीने लाते हैं आपके लिए। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल, ईशान, पूजा परिहार, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सीटी दीवाना, और उसके बाद हैं ये हमारे पास ऊपरकोट मोहल्ला चौखंटी बुलंदशहर से पूरा का पूरा अब्बासी परिवार। आप सबका स्वागत है दिल का मेल बॉक्स में।

दिल का मेल बॉक्स में इससे अच्छी जगह ये कहने के लिए नहीं होगी कि आप कौन हैं। ये है नाम जगदीश कुमार राहुल रितिका नांगलोई कहते हैं धन्यवाद। गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही शाहीन फातिमा अदनान अनुखान है और खेड़ा वडिंग खेड़ा से पंजाब से मिंटू थॉमस पिंकी लवली आरती अरोड़ा कहते हैं कि भाई देखिए जो गीत है उसमें हम शामिल हैं। गांव जा खोद राजस्थान से शंभू दयाल खटक विमला देवी अमरजीत सुंदरलाल खटक योगेश कुमार दीपक कुमार नई दिल्ली से कमलेश मुकुल सचिन और दीपांशु प्रोग्राम के सभी सॉन्ग्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। आहा क्या बात है, यही तो हम सुनना चाहते हैं। स्क्रीन की दुनिया से जरा ऊबने लगे हैं हम, सुना है कि फिर से किताबों से दिल लगाने लगे हैं हम। थैंक यू वेरी मच सत्य प्रकाश सनोठिया रोहिणी से, थैंक यू। ये बताता है कि आप कितने ध्यान से हमें सुनते हैं।

कितनी अच्छी लाइन है ना, चलो जी जो हुआ वो जाने दो, बहुत कुछ हुआ। ये जो जाने दो है ना, ये मैजिकल वर्ड है, पता है, अगर हम ये सीख लें तो बड़ी सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें छुटकारा मिल जाए। मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनवार और नजमा बेगम नाज हैं, भाभी सरिता गौतम है, शाहजी नगर दिंगलूर नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे हैं, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे हैं, और मधु किरण दिल्ली से पूछती हैं कि आपने कहा कि नाम और काम, काम तो आप अच्छे गीत करके सुनवा रही हैं, अच्छा कर रही हैं, लेकिन अपना नाम भी तो बताइए। तो मधु किरण जी थोड़ा छोटा सा नाम है इसलिए मिस हो जाता है, कोई बात नहीं, मेरा नाम है INDU इंदु। और आगे हमारे पास जो नाम है दिल का मेल बॉक्स में, ये है कोपरगांव से सुरेश वर्षा, शेवगांव से श्रीराम उषा गोंधली, और मोताला बाजार से बबलू हैं, शेख हैं, शेख वजीर हैं, सोहेल सैयद तहमूर, शामिर खान अजलान हैं, जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना अनुज, आयुषी रमेश चंद्र, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुड़ाना, और मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू राजपाल, पंकज काजल, सीमा मानवी, तनी लक्ष्य, सोनी मोहिनी, ऋतिक, बलबीर सिंह, कोई छूट तो नहीं गया ना ये? यस, ये है आपका दिल का मेल बॉक्स आकाशवाणी दिल्ली के FM।

और इसके साथ साथ कुछ नाम और हैं जो मैंने सोचा कि मैं ले लूं। ये है निर्मला विशाल मलकापुर महाराष्ट्र से, नारायण इंगले, सोपान तायड़े और आशीष मोहरकर। और इसके बाद और भी कई सारे गाने, कई सारे नाम, सिर्फ और सिर्फ यहीं पे दिल का मेलबॉक्स।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
4: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
5: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

और मैं आ गई दिल का मेल बॉक्स लेकर के। शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकर, अमर, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कनौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रजक और रजक, लालू, सोना, मोना, हनी, यस तुम आ गए हो, नूर आ गया। ये गाना उनकी पसंद का चल गया। सलीम अख्तर का जन्मदिन है तो कोई गीत चला दीजिए, कोई नहीं, सारे गीत हैप्पी बर्थडे भाई। दिल्ली रेडियो लिसनर्स क्लब से नवाब अहमद भारती हैं, बबलू कश्यप हैं, महेश अग्रवाल हैं, अशरफ अली हैं, सिराज मिथुन, संजय ढींगिया हैं, और उसके अलावा फरमाइश की है जय जैनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से रूपेश महेश प्रज्ञेश ने, डबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद कुमार गौरव मंदूरकर, और दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमान हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा और बेबी चाहत। आपकी चाहत ये रही।

0: जो मालो है जो मालो
1: दिल का मेल बॉक्स में ये है सहारनपुर से आशा नारंग, सुरेश नारंग, संदीप मकर, ज्योति मकर, मन्नत भरत, कमल सानी, पिंगावाला चौक, गुराया, जालंधर से। तो दिल का मेल बॉक्स में वैसे मुझे पता है बहुत सारे और लोग हैं जो थे इस वक्त, लेकिन हर गाना हम सबके दिल के करीब है और हर नाम हमारे पास है।

इस चाहत को यूं ही बनाए रखिएगा, दिल का मेल बॉक्स फिर से खुलेगा। फिर से मिलेंगे हम आपसे कल आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे। अभी बजने वाले हैं 11, जो है समाचारों का, और उसके बाद तस्वीर लेके हाजिर हो जाएंगे एक बार फिर से हम। तो इसी के साथ हम आपसे कहना चाहते हैं कि मेल कीजिए, अपनी चॉइस का गाना हमें बताते रहिए, कहां से और क्यों गाना पसंद है ये भी बताइए तो अच्छा लगेगा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। लोकसभा में आज चार विधेयक पेश किए जाने हैं। इनमें ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026, खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026, केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 शामिल हैं। उधर राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैंकर बहिसाक्ष्य विधेयक 2026 पेश करेंगी। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों और राज्य सरकार के बीच तीन दौर की वार्ता के बावजूद गतिरोध जारी है। विद्यार्थियों ने सरकार के प्रस्तावों को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है और आज विधानसभा का घेराव करने के अपने फैसले पर कायम हैं। सरकारी क्रय विक्रय जैम पोर्टल पर कुल व्यापार का मूल्य पिछले दशक में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जैम पोर्टल पर 12 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उपक्रम पंजीकृत हैं। इनमें 2 लाख से अधिक महिलाएं हैं। 42,000 से अधिक स्टार्टअप भी पोर्टल पर पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि जैम पोर्टल ने डिजिटल खरीद के माध्यम से जवाबदेही मजबूत की है। भारत में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 300 गीगावाट से अधिक हो गई है। 31 जुलाई तक हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बताया है कि देश की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। भारत और अमेरिका की नौसेना का संयुक्त विस्फोटक आयुध रोधक ईओडी अभ्यास 2026 आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू हो रहा है। ये अभियान 14 अगस्त तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इसका उद्देश्य दोनों नौसेनाओं की ईओडी टीमों और विशेषज्ञ गोताखोरों के बीच परिचालन क्षमता को बढ़ाना और पेशेवर सहयोग को सशक्त बनाना है। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन आज से 4 दिन की मॉरिशस की यात्रा पर रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा दोनों पक्षों के बीच समुद्री सहयोग और रक्षा संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों का हिस्सा है। इस दौरान वे मॉरिशस सरकार के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प के अनुपालन का आग्रह किया है। संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष के समारोहों का प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की। इधर राजधानी दिल्ली में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने येलो लाइन पर हर घर तिरंगा थीम से सजी एक विशेष मेट्रो ट्रेन का अनावरण किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में

0: डीएमआरसी ने बताया कि 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों के तहत इस ट्रेन को तैयार किया गया है। उधर नागालैंड में कोहिमा में भारतीय जनता पार्टी ने देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने के राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत दो पहिया वाहन रैली हर घर तिरंगा का आयोजन किया। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है। आज विश्व सिंह दिवस के अवसर पर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि एशियाई शेर के संरक्षण में भारत की सफलता वन्य जीव और जैव विविधता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का गौरवशाली प्रमाण है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश में एशियाई शेरों की संख्या 2015 में 523 से बढ़कर 2025 में 891 हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने भी आज विश्व सिंह दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi met the medalists of the Commonwealth Games 2026 at his residence in New Delhi yesterday. During the interaction, the medal winners shared their experiences from the Games with the Prime Minister. Mr. Modi emphasized that prestige is not gained merely by cutting ribbons, but by playing with the spirit of a young student or an aspiring athlete. He encouraged the athletes to enhance the prestige of Khelo India. Talking to weightlifter Sayakom Mirabai Chanu, the Prime Minister said that her victory serves as a tremendous inspiration for future generations.
2: मेरे यहाँ मुझे यहाँ लगभग 12-13 साल हो गए इसी मकान में। अगर मैंने रेगुलरली और हर बार किसी को रिसीव किया है, किसी को मैं मिला हूँ, तो खिलाड़ी है। पिछले 10-12 सालों के आप लोगों के पुरुषार्थ के कारण, भारत को लगातार विजय दिलाने के आपके प्रयासों के कारण और उत्तरोत्तर सफलता में नई ऊंचाइयां पार करने की परंपरा के कारण, जो काम शायद हम स्कूलों में जाके कहें कि नहीं नहीं खेलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो काम स्कूलों में जाकर के हम कर सकते थे, उससे ज्यादा आपका मेडल उनको इंस्पायर करता है।
1: यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स रक्षा निखिल खड़से वर प्रेजेंट ऑन द ओकेजन। इंडिया फिनिश्ड एट द फोर्थ स्पॉट ऑन द मेडल टेबल ड्यूरिंग द गेम्स हेल्ड बिटवीन 23rd ऑफ जुलाई एंड द 2nd ऑफ दिस मंथ एट ग्लासगो इन स्कॉटलैंड। इंडियन एथलीट्स won 39 मेडल्स इंक्लूडिंग 13 गोल्ड, 17 सिल्वर एंड 9 ब्रॉन्ज अक्रॉस वेरियस स्पोर्ट्स। The Har Ghar Tiranga movement is gaining momentum across the nation. In Maharashtra, the Har Ghar Tiranga campaign has begun with patriotic fervor. Tiranga rallies were organized in various districts of Maharashtra, including Bid, Thane and Buldhana. In Bihar, a grand Tiranga Yatra will be organized in Patna today under the Har Ghar Tiranga campaign. Several state ministers, legislators, officials and a large number of people will participate in the Tiranga Yatra. Manipur also joined the rest of the country in organizing the Har Ghar Tiranga campaign. State Chief Minister Yuman Khemchand participating in the campaign from his residence at Singa Jamai under Imphal West District urged the people to recognize themselves as Indians first and then a Manipuri. Meanwhile, Delhi Metro Rail Corporation has unveiled a special metro train wrapped with the Har Ghar Tiranga theme on the yellow line to celebrate the spirit of independence. In Nagaland, the Bhartiya Janata Party organized a two-wheeler rally Har Ghar Tiranga in Kohima today as part of the nationwide campaign to promote the spirit of patriotism and national unity. The rally was flagged off by Nagaland Minister for Higher Education and Tourism, Temjen Imna Along from Kohima. Earlier addressing the gathering, the minister urged the citizens, particularly the youth, to carry the national flag with pride and respect as the state joins the nationwide commemoration of the 80th Independence Day. The gross merchandise value of the government e-marketplace GeM has increased from 422 crore rupees to over 155,000 crore rupees in the last decade. This was stated by Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal. In a social media post, Mr. Goyal said that over 12

और ये इशारा है तस्वीर का। और आज हम आपको लेके जाएंगे शिप्रा के पावन तट पे बसी आस्था की अनुपम पहचान। हर कण में शिव का वास, जहां वही है मेरी उज्जैन महान, महाकाल की नगरी उज्जैन। अगर आप गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, एक बार फिर से सब कुछ याद आ जाएगा। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे तस्वीर है ये उज्जैन की। और नहीं गए हैं तो फिर मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको कन्विंस करने की कि मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में चलिए, वहाँ की सज धज देखिए। महाकाल की जो गूंज है बड़ी निराली है, हर मन में ऐसा लगता है कि नए प्राण हो गए हों। तो ये सारी की सारी चीजें, ये सारी की सारी बातें होंगी सिर्फ और सिर्फ यहीं पे।

बात करते हैं उज्जैन की। उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश राज्य में क्षिप्रा नदी के तट पर बसा बहुत पुराना और पवित्र शहर है। इसे महाकाल की नगरी और मंदिरों का शहर भी कहते हैं। यहाँ भगवान शिव का प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो हर 12 साल में यहाँ पे सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है। और मेन चीज बहुत सारी है इसके बारे में, लेकिन कुछ ना बड़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग बात है। जैसे कि उज्जैन प्राचीन और ऐतिहासिक शहर है, ये तो सब जानते हैं, और कहते हैं कि लगभग 5000 साल पुराना है। और आदि ब्रह्म पुराण में सबसे अच्छा शहर के रूप में इसका वर्णन मिलता है। इसे अग्नि पुराण और गरुण पुराण में मोक्षदा और भक्ति मुक्ति कहा जाता है। एक समय था जब ये शहर एक बड़े साम्राज्य की राजधानी था, और आज भी उज्जैन में ऐसे लोगों की भीड़ और ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको जिनके दिलों में उज्जैन बसता है। इस शहर का जो इतिहास है बहुत ही शानदार है। जैसे कि मैं हर बार बताती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि किसी शहर की थोड़ी सी हिस्ट्री अगर मुझे मिल जाए तो उसको जानना। जैसे कि कहते हैं कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारवती, जैव, सप्तैता, मोक्षदायिका। पुराणों के अनुसार उज्जैन के कई नाम हैं, उज्जैनी, प्रतिपाल, पद्मावती, अवंतिका, अमरावती, कुमुदवती, विशाला। और एक समय था जब ये एक शहर हुआ करता था ऐसा कि उसकी अपनी एक, और आज भी है, उसकी जो चमक है, उसकी जो रौनक है वो आज भी है। और शहर अवंती जनपद की राजधानी बन गया, इसलिए इसे अवंतीपुरी के नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा जो यहाँ की जो चीज़ें हैं वो आपको बहुत अच्छी लगेंगी, और यहाँ पे आपको देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, मतलब बहुत कुछ मिल जाएगा। और आप यही कहेंगे उज्जैन में आके, क्योंकि ये एक तरह की ना शांति देती हैं इस तरह की जो जगहें होती हैं। जब हमारे मन में उथल पुथल थोड़ी सी मचती है, हम अपने आप को शांत करना चाहते हैं, तो कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पर जाना हम पसंद करते हैं। उन्हीं में से एक है उज्जैन, तस्वीर में आज आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पे।

उज्जैन के लिए तो ये कहा जा सकता है कि अगर आपने एक बार इस शहर को देख लिया तो कभी नहीं भूल सकते। विक्रम की गौरव गाथा गाता है ये शहर, कालिदास का अमर सम्मान है, सदियों से इतिहास संजोए है, भारत की अनुपम शान है ये उज्जैन। इसके बारे में बहुत कुछ है कहने के लिए। कहते हैं कि 7 मुक्ति प्रदान करने वाले शहरों में से एक शहर है। गढ़कालिका और हरसिद्धि 2 शक्तिपीठ और पवित्र कुंभ जो भारत के 4 शहरों में होता है। राजा भर्तृहरि की गुफा यहाँ पाई जाती है और माना जाता है कि उज्जैन में भगवान विष्णु के चरण चिन्ह है। अब यहाँ पे ना मेला लगता है, वो आप अगर उसको प्लान करके जाएं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि शैव महोत्सव है, 5 से 7 जनवरी तक 3 दिन का चलता है ये शैव महोत्सव। इसका आयोजन उज्जैन में किया जाता है। त्योहार के दौरान सभी 12 ज्योतिर्लिंगों का एक प्रतीकात्मक समागम है ये, और ये उत्सव अब जब देखेंगे ना आप तो आपको लगेगा कि ये भव्य शोभा यात्रा के साथ शुरू होता है और बहुत सुंदर होता है। और अगर अभी आसपास जाना चाहते हैं तो श्रावण सवरी जुलूस, श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को भाद्रपद के अंधेरे पखवाड़े में अमावस्या तक और कार्तिक के उज्जवल पखवाड़े से लेकर के मंगरेश्वर के अंधेरे पखवाड़े तक भगवान महाकाल का जुलूस सड़कों पर गुजरता है उज्जैन में। भाद्रपादियों में अंतिम सवारी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है और लाखों लोगों की उपस्थिति और प्रदर्शन में ये सब कुछ होता है। दशहरा मैदान में विजय

लक्ष्मी पर्व पे महाकाल की शोभा यात्रा भी बहुत अच्छी होती है। और दूसरा मेला है कालिदास समारोह, इसके बारे में बताऊंगी मैं आपको यही यानी कि तस्वीर में जो इस वक्त चल रही है एफएम गोल्ड पे। और ये तस्वीर है उज्जैन की, उज्जैन वही जहां पे जाने के लिए बहुत दिनों से आप सोच रहे थे कि वो बुलाएंगे तब हम जाएंगे।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
5: स्वागत है आपका तस्वीर में। तस्वीर है ये उज्जैन की, जो भारत के पवित्र शहरों में से एक है। मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के किनारे पे है। दक्षिण और उत्तर को सीधे जोड़ते हुए यात्रा करने वाली क्षिप्रा नदी एकमात्र नदी है। उज्जैन के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आकृति के विशिष्ट चरित्र को ये दिखाती है।

और ये चलना और ये जो भाव है ये उज्जैन हमें सिखाता है। ये एक अनूठे भौगोलिक स्थान पे है उज्जैन, जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, जो कि भारत के पारंपरिक कैलेंडर के लिए भारत के समय का भी प्रतिनिधित्व करती है। मतलब ये कि हम किसी शहर में जाएं और उसकी छोटी छोटी चीज़ों को समझें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक मार्च यानी कि मार्च के लास्ट में गर्मियों से शुरू अगर आप करें वहाँ पर जाना तो अच्छा लगेगा, क्योंकि मई में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच जाता है और मॉनसून जून के मध्य में आता है और अक्टूबर की शुरुआत तक जारी रहता है। तो फिर आप मौसम के हिसाब से भी अपना जो वहां जाने का प्लान है उसको देख सकते हैं। और मैं बात कर रही थी कालिदास समारोह की, तो जो 1958 में शुरू हुआ और ये हर साल उज्जैन में कालिदास समारोह मनाया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने महाकवि कालिदास की स्मृति को ध्यान में रखते हुए हर साल इसका वो आयोजन करते हैं, तो इसको भी आप अगर अपनी उस लिस्ट में रखें तो आपको शायद बहुत अच्छा लगेगा। और इस साल ये जो भारतीय कालिदास समारोह है वो 18 नवंबर से 26 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा कालिदास संस्कृत अकेडमी उज्जैन में। तो उसी हिसाब से आप अपना जो

जाने का जो पूरा का पूरा प्लान है उसको देख सकते हैं कि कैसे करना है। बहुत अच्छा लगेगा, एक बार घूम के तो आइए, फिर आप कहेंगे कि उज्जैन की तस्वीर कितनी अच्छी लगी आपको।

0: हाथों की लकीरों में किस्मत का राज नहीं होता, मेहनत की हर एक बूंद से जीवन यूं ही साज नहीं होता। और कई बार जब हम अपने हाथों की लकीरें पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं ना, तब कुछ ऐसे शहर हैं जहां का रुख करते हैं, और उज्जैन उसी में से एक है।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त

0: से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: यह है तस्वीर आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे। बात हो रही है उज्जैन की, एक ऐसा नगर जिसका महत्व समय की सीमाओं से बहुत आगे है, और ये एहसास तब होगा जब आप वहां पे जाएंगे। उज्जैन को कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, और इसको इतनी गहराई है कि बस आप ढूंढते रहिए, आपको थाह नहीं मिलेगी।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

बनारस वाला हवाई अड्डा इंदौर का है। उज्जैन पश्चिम रेलवे का एक रेलवे स्टेशन है। नियमित बस सेवाएं आपको बड़े आराम से मिल जाएंगी। उज्जैन जाइए और वहां पे जाके मालवा की प्रसिद्ध दाल बाटी और दाल बाफले का स्वादिष्ट भोज लिए बिना मत आइए।

उज्जैन पुकारता है। उज्जैन हर शिव भक्त को पुकारता है। जाइए महाकालेश्वर मंदिर देखिए, श्री बड़े गणेश जी का मंदिर है वहां पे। इसके बाद मंगलनाथ मंदिर हरिसिद्ध क्षिप्रा घाट पे तो जरूर जाइएगा, क्योंकि नदी के दाहिने किनारे जहाँ पे नगर स्थित है वहाँ बने ये घाट बहुत अच्छे लगते हैं। और इसके अलावा गोपाल मंदिर है, गढ़कालिका देवी है, भृतहरी गुफा है, काल भैरव है, महाकाल लोक है, मतलब इतनी सारी जगहें एक साथ हैं और इतना कुछ है देखने के लिए। और उसके अलावा आप यहाँ के बारे में अगर कुछ पढ़ लिख के जाएंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि दाल बाटी और दाल बाफले का स्वाद लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो पोहे समोसे आपका इंतजार कर रहे हैं, जिसको कहते हैं अल्पाहार। और एक शब्द है स्व अल्पाहार, मतलब कि अगर कोई साथी मिले या ना मिले लेकिन हम अपने आप भी खा सकते हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं और थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको और भी कुछ न कुछ ऐसी चीज़ मिल जाएगी जिसके लिए आप मुझे कहेंगे कि भाई आपने तो ये हमें बताया ही नहीं कि ये भी वहाँ पे बड़ा अच्छा मिलता है। अब आफ्टर ऑल कुछ चीज़ें ऐसी भी तो होनी चाहिए जिनको आप ढूंढिए। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे उज्जैन की तस्वीर आपको कैसी लगी हमें बताइएगा जरूर। fmgoldairdelhi@gmail.com पे हमें अच्छा लगेगा ये जान के कि हमने आपको कन्विंस तो कर ही दिया कि घूम के आइए, क्योंकि घूमना हमारी आदत है और इसीलिए

हमारे पास पैर हैं ताकि हम चलते रहें, बिल्कुल इस गाने की तरह। और अब होने वाले हैं 12, जो समय है समाचारों का। मैं मिलूंगी कल फिर से। टेक केयर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। लोकसभा की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन के 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। आज सुबह 11 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, पीठासीन अधिकारी एनके प्रेमचंद्रन ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष ने विद्यार्थियों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया और इस पर गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग की। शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही दिन के 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों और राज्य सरकार के बीच तीन दौर की वार्ता के बावजूद गतिरोध जारी है। विद्यार्थियों ने सरकार के प्रस्तावों को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है और आज विधानसभा का घेराव करने के अपने फैसले पर कायम हैं। सरकारी क्रय विक्रय जेम पोर्टल पर कुल व्यापार का मूल्य पिछले दशक में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जेम पोर्टल पर 12 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उपक्रम पंजीकृत हैं। इनमें 2 लाख से अधिक महिलाएं हैं। 42,000 से अधिक स्टार्टअप भी पोर्टल पर पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल ने डिजिटल खरीद के माध्यम से जवाबदेही मजबूत की है। भारत में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 300 गीगावाट से अधिक हो गई है। 31 जुलाई तक हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बताया है कि देश की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए अपने सामूहिक संकल्प के अनुपालन का आग्रह किया है। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष के समारोहों का प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
1: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
0: भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते हैं। अभी समाचार मिला है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। आज विश्व सिंह दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि एशियाई शेर के संरक्षण में भारत की सफलता वन्य जीव और जैव विविधता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का गौरवशाली प्रमाण है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश में एशियाई शेरों की संख्या 2015 में 523 से बढ़कर 2025 में 891 हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी आज विश्व सिंह दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी है। उज़्बेकिस्तान के

0: आंगन। घर आंगन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त मंजुला,
1: और मैं हूँ आपके साथ रश्मि कुकरेती। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार। और अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर। और दोस्तों, भावनाएं हमारे जीवन का हिस्सा है, पर इन्हें अपने फैसलों पर हावी मत होने दीजिए। और रश्मि जी, क्यों ना सबसे पहले हम अपने लिसनर्स को आज का सवाल बता दें। तो आपका आज का सवाल है कि किस स्वतंत्रता सेनानी से आप सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और क्यों, उसका जवाब हमें भेजिए ईमेल आईडी fmgoldga@gmail.com पे।
1: जी, अगस्त का महीना आ गया है और 15 अगस्त आने वाला है, तो आप पहले से ही उसके रंग में रंगी हुई है।
0: मैं सोचे हुई वही हमारा
1: लेकिन मैं एक और रंग जो सावन का रंग है, आज सावन का सोमवार है, दूसरा सोमवार है, और इस सुहाने मौसम और भोलेनाथ की भक्ति से सजे इस पावन सोमवार की आप सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। आज है सावन का दूसरा सोमवार और श्रद्धा वातावरण में हरियाली और चारों ओर गूंजता हर हर महादेव का जयकारा, और भगवान शिव आपके जीवन में सुख शांति स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आए और आपकी हर मनोकामना को पूरी करें। और जुड़ जाइए हमारे साथ सावन की इस खूबसूरत सुबह को और भी खास बनाने के लिए।
0: तो चलिए शुरू करते हैं मनोरंजन और जानकारी से भरे इस शो को, और सावन के आज के सोमवारी को और भी खूबसूरत बनाते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ।

0: अभी हम सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज में ये गाना पुराना मंदिर फिल्म से। और दोस्तों, आजादी तो मिल गई थी लेकिन देश को आगे बढ़ाने का असली सफर अब शुरू हुआ। यानी टूटे हुए ढांचे को मजबूत बनाना था, नई पीढ़ी को शिक्षित करना था, विज्ञान में आत्मनिर्भर बनना था और समाज को नई सोच देनी थी। इस सफर में भारत की अनेक बेटियों ने ऐसी मिसालें कायम की जिनकी बदौलत आज का भारत खड़ा है। आप क्या सोचती हैं रश्मि जी?
1: जी बिल्कुल, ऐसी ही कुछ महान महिलाओं के बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी, राजकुमारी अमृत कौर, और एम्स की स्थापना में उनकी निर्णायक भूमिका रही। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, नर्सिंग शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की मजबूत नींव रखी उन्होंने।
0: और उसके बाद डॉक्टर कमला सोहनी, भारत की पहली महिला वैज्ञानिक जिन्हें विज्ञान में PhD प्राप्त हुई। उन्होंने पोषण विज्ञान पर शोध किया और विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं के लिए नई राह खोली।
1: जी, और डॉक्टर असीमा चटर्जी भारत की अग्रणी महिला रसायन वैज्ञानिकों में शामिल है और कैंसर और मलेरिया की दवाओं पर उनका जो शोध है वो भारतीय विज्ञान की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
0: डॉक्टर दर्शन रंगनाथन प्रख्यात रसायन वैज्ञानिक, जटिल जैविक अणुओं के निर्माण और रसायन विज्ञान में उनके शोध ने भारतीय वैज्ञानिक जगत में नई पहचान बनाई।
1: और कैप्टन दुर्गा बनर्जी इंडियन एयरलाइंस की पहली महिला पायलट, उन्होंने उस दौर में विमान उड़ाया मंजुला जब ये क्षेत्र एकदम पूरी तरह से पुरुषों के लिए माना जाता था।
0: और MS सुब्बलक्ष्मी को हम कैसे भूल सकते हैं, भारतीय शास्त्रीय संगीत को विश्व मंच तक पहुंचाने वाली महान गायिका, वे भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार।
1: जी, और कमला देवी चट्टोपाध्याय भारतीय हस्तशिल्प करघा और रंगमंच के पुनर्जागरण की अग्रदूत, उन्होंने स्वतंत्र भारत में कारीगरों और

0: पारंपरिक कलाओं को आर्थिक और सांस्कृतिक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की महान स्तंभ, उनकी लेखनी ने नारी चेतना, शिक्षा और संवेदनशील समाज की नई दृष्टि दी।
0: जी, और आजादी का पर्व हम मनाने जाएंगे और याद करें लक्ष्मी सहगल को, आजाद हिंदू फौज की पहली की वीर सेनानी और स्वतंत्रता के बाद उन्होंने चिकित्सक और समाज सेवी के रूप में अपना जीवन आम लोगों की सेवा में समर्पित किया।
1: विजय लक्ष्मी पंडित स्वतंत्र भारत की अग्रणी महिला राजनयिकों में शामिल और संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष।
0: जी, और स्वतंत्र भारत में महिला शिक्षा, सामाजिक सुधार और राष्ट्र निर्माण के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली दुर्गाबाई देशमुख और योजना आयोग से लेकर सामाजिक संस्थाओं तक उनका योगदान उल्लेखनीय है।
1: और अन्ना राजम मल्होत्रा भारत की पहली महिला IAS अधिकारी, उन्होंने प्रशासनिक सेवा में महिलाओं के लिए रास्ता खोला और ये साबित किया कि देश की शासन व्यवस्था में महिलाएं भी नेतृत्व की भूमिका निभा सकती हैं।
0: जी, और रुक्मणी देवी अरुंडेल का नाम याद कर रही हूँ, भरतनाट्यम जो नृत्य की कला है उसको पुनर्जीवित करके उन्होंने विश्व भर में सम्मान

0: योगदान उल्लेखनीय है।
1: और अन्ना राजम मल्होत्रा भारत की पहली महिला IAS अधिकारी, उन्होंने प्रशासनिक सेवा में महिलाओं के लिए रास्ता खोला और ये साबित किया कि देश की शासन व्यवस्था में महिलाएं भी नेतृत्व की भूमिका निभा सकती हैं।
0: जी, और रुक्मणी देवी अरुंडेल का नाम याद कर रही हूँ, भरतनाट्यम जो नृत्य की कला है उसको पुनर्जीवित करके उन्होंने विश्व भर में सम्मान दिलाया। महान नृत्यांगना और कला क्षेत्र की स्थापना कर भारतीय कला को नई पहचान दी। तो मंजुला, क्यों ना एक गीत जो है, मुझे लग रहा है नृत्य पर हम सुना दे अपने सुनने वालों को।
1: बिल्कुल।

किया, तूने बड़ा तंग किया। डोरी मेरे पास हो तो सैया तोहे खींच लूं, जाने ना दूं, जाने ना दूं, आंखों में बसा के आंखें मीट लूं।

0: अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना जुगनू फिल्म से। और देखिए रश्मि जी, भारत के मंदिर केवल आस्था के केंद्र नहीं होते हैं, बल्कि वे विज्ञान, गणित, वास्तुकला और अभियंत्रण के ऐसे अद्भुत उदाहरण भी है जिन्हें देखकर आज भी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये कैसे हुआ। तो आइए जानते हैं ऐसे चार मंदिर जहाँ इतिहास, आस्था और विज्ञान का अद्भुत संगम दिखाई देता है।
1: और मंजुला, सबसे पहले बात करते हैं आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर की। यहाँ का जो प्रसिद्ध झूलता वास्तव सदियों से लोगों को चकित करता आ रहा है। ये जो स्तंभ है ना, इसके नीचे से आज भी कपड़ा या कागज आसानी से निकल जाता है। और ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि पूरे मंदिर की अत्यंत सटीक जो ये भार वितरण प्रणाली होती है ना, यानी कि वेट डिस्ट्रीब्यूशन, इसका कमाल है। और पूरे मंदिर का भार मंजुला इस प्रकार संतुलित किया गया है कि एक स्तंभ जमीन को पूरी तरह छुए बिना भी भाई वाह, संरचना एकदम मजबूती के साथ खड़ी है।
0: बहुत बढ़िया। और अब चलते हैं तमिलनाडु के मीनाक्षी अम्मन मंदिर की ओर। यहाँ के कुछ पत्थर के स्तंभों को हल्के से थपथपाने पर अलग अलग प्रकार की मधुर ध्वनियां सुनाई देती है।
1: अच्छा।
0: इन्हें संगीतमय स्तंभ भी कहा जाता है। और एक ही पत्थर से बने इन स्तंभों से अलग अलग स्वर निकालना उस समय के ध्वनि विज्ञान या पत्थर की गुणवत्ता और अद्भुत शिल्प कला की गहरी समझ को दिखाता है।
1: और तमिलनाडु से चलते हैं उड़ीसा की ओर, कोणार्क के सूर्य मंदिर की ओर। सूर्य के रथ के रूप में बने इस मंदिर के 24 विशाल पत्थर के जो पहिए हैं ना, वो केवल सजावट नहीं है, इन्हें इस प्रकार बनाया गया है कि ये सूर्य घड़ी यानी सन डायल की तरह समय का बताने का काम करें। और सूर्य की जो छाया है इन पहियों पर पड़कर समय का संकेत देती है। ये उस युग के खगोल विज्ञान, गणित और सौर ज्यामिति की अद्भुत समझ का प्रमाण है।
0: औसम। और अंत में तमिलनाडु का भव्य बृहदेश्वर मंदिर। इस मंदिर के शिखर पर लगभग 80 टन वजन का एक विशाल पत्थर स्थापित है। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि लगभग 1000 साल पहले बिना आधुनिक क्रेन के इसे इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया कैसे गया। तो माना जाता है कि इसके लिए कई किलोमीटर लंबा ढलानदार मार्ग बनाया गया है, जिसके सहारे इस विशाल पत्थर को ऊपर पहुंचाया गया। और यह उस समय की सिविल इंजीनियरिंग और तकनीक का अद्भुत मिसाल है।
1: तो मंजुला, ये जो भारत के सुंदर मंदिर है, ये हमारे केवल आस्था में ही नहीं, बल्कि विज्ञान, गणित, ध्वनि विज्ञान, खगोल विज्ञान और अभियंत्रण के भी अत्यंत जो है उन्नत की जी उदाहरण है। और यही कारण है कि ये धरोहरें आज भी पूरी दुनिया के लिए शोध और प्रेरणा का विषय बनी हुई है। तो मंजुला, आप तुम ये बताओ, मैं तुमसे प्रश्न पूछती हूँ, तुम सबसे प्रश्न पूछती हो कि इनमें से यदि एक मंदिर देखने का अवसर मिले तो आप सबसे पहले कौन से मंदिर में जाना चाहेंगे?
0: मैं सबसे पहले तमिलनाडु के मीनाक्षी टेम्पल में जाना चाहूंगी। और वैसे भी मंदिर का भ्रमण बहुत ही खूबसूरत
1: और मन भी तो एक मंदिर है ना मंजुला।

0: अभी हम सुन रहे थे ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म तेरे मेरे सपने। और रश्मि जी, ऐसा लग रहा है कि आप मेल्स पढ़ रही हैं।
1: देखिए, सबसे पहले नवीन भाटिया जी का हमेशा की तरह मेल आ गया है मोती नगर से। कहते हैं शहीद भगत सिंह, क्योंकि उनके बचपन से ही देश प्रेम मिला था।
0: और गौरी शंकर जी लिखते हैं, बेटा आप दोनों को राम राम। वैसे तो हमारे स्वतंत्रता सेनानी एक से बढ़कर एक हुए हैं, जिन्होंने आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान की, लेकिन उनके फेवरेट सुभाष चंद्र बोस है, क्योंकि उन्हें पता भी नहीं चला कि उनकी मैथ कैसे हुई, तो उनका फेवरेट सुभाष चंद्र बोस है, जो मेरे भी फेवरेट हैं।
1: जी, और आदित्य मुद्गल हमारे साथ जुड़ गए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई, जो मेरे पसंदीदा, जो जिनसे मैं प्रेरणा लेता हूँ, वो जो क्रांतिकारी है, चंद्रशेखर आजाद का नाम ले रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल जिसे कहते हैं निर्भीक थे, और देश पर वो कुर्बान हो गए, बहुत बड़ी कुर्बानी दी उन्होंने।
0: और ऐना लिखती हैं कि मैं सुभाष चंद्र बोस से सबसे ज्यादा प्रभावित हूँ, क्योंकि उन्होंने देश की आजादी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया।
1: वाह। और संदीप राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। उन्होंने कहा है, बहुत अच्छी और लंबी मेल उन्होंने लिखी है, कि गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम को केवल राजनीति नेताओं और शिक्षित वर्ग तक नहीं, बल्कि करोड़ों आम भारतीयों का जन आंदोलन बना दिया। सत्याग्रह की विचारधारा को विकसित किया। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे अभियानों को चलाया, और विभिन्न वर्गों, जो थे किसान हो, मजदूर हो, महिलाओं हो, उनको जोड़ा। साथ में स्वदेशी आंदोलन और दाढ़ी मार्च का वो जिक्र कर रहे हैं, अहिंसा का जिक्र कर रहे हैं, कि बहुत उनकी प्रतिबद्धता रही, और कई वर्ष उन्होंने जेल में बिताए। सादा जीवन और उच्च विचार का आदर्श दिया। नैतिक उद्देश्यों के लिए उपवास और व्यक्तिगत त्याग को भी प्रभावी माध्यम के रूप से इस्तेमाल किया।
0: बहुत बढ़िया मेल। और अनन्या लिखती है कि मैं भगत सिंह से सबसे ज्यादा प्रभावित हूँ, और क्योंकि कम उम्र में उन्होंने देश की आजादी के लिए बहुत ज्यादा कुछ किया, और उनके साहस, जो अदम्य साहस से उन्होंने फाइनली देश पे अपनी जान कुर्बान दी।
1: जी, और अवनीश कुमार जुड़ गए हैं। वो कहते हैं कि मैं जो हूँ सुभाष चंद्र बोस को बहुत पसंद करता हूँ, और भगत सिंह का भी नाम ले रहे हैं। भाई वाह, जो ये क्रांतिकारी हैं, ये शहीद हैं, जो देश पर कुर्बान होने वाले हैं, इनके ये हमारे दिलों में बसते हैं, इनकी वजह से आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले पा रहे हैं। मंजुला,
0: जब बात हो ही रही है स्वतंत्रता सेनानी की, तो हमारा भी यही सोचना है कि जो पेरेंट्स होते हैं रश्मि जी, वही

0: बच्चों में इस तरह का जो भावना है वो डेवलप कर सकते हैं। यानी बच्चे सुनते कम है, देखते ज्यादा है, इसलिए माता पिता जो करते हैं वही बच्चों का सबसे बड़ा पाठ बन जाता है। तो हम बात करेंगे कि घर परिवार में देशभक्ति के संस्कार देने में माता पिता की क्या भूमिका हो सकती है। जरा सोचिए रश्मि, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके बच्चे को सबसे पहले राष्ट्रगान किसने सिखाया, तिरंगा का सम्मान करना किसने सिखाया, देश के वीरों की कहानियां किसने सुनाई, तो आपका जवाब क्या होगा?
1: भाई मैं तो कहूंगी कि ये घर से संस्कार पहले मिलते हैं, और सभी की जो घर में सबसे पहले जो जो माँ होती है वो पहली गुरु होती है, यही सच भी है, क्योंकि देशभक्ति की शुरुआत किसी किताब से नहीं, परिवार से होती है। बच्चों को केवल ये कहना कि देश से प्यार करो ये काफी नहीं है मंजुला, उन्हें ये भी दिखाना होगा कि प्यार कैसे किया जाता है देश से।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और केवल सीमा पर जाकर लड़ना ही देशभक्ति नहीं है, समय पर टैक्स देना, पेड़ लगाना, पानी बचाना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, कानून का पालन करना और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना, ये भी सच्ची देशभक्ति है। एक छोटी सी आदत पूरे परिवार का माहौल बदल सकती है।
1: तो सप्ताह में एक दिन बच्चों के साथ किसी स्वतंत्रता सेनानी की कहानी पढ़िए, उनसे पूछिए अगर तुम उस दौर में होते तो देश के लिए क्या करते। भाई जो 15 अगस्त 26 जनवरी को केवल छुट्टी के रूप में नहीं मनाइए, बल्कि जो घर में जो तिरंगे का महत्व है, संविधान की मूल भावना है, हमारे जो राष्ट्र प्रतीक है उनके बारे में भी चर्चा कीजिए,
0: और दादा दादी या नाना नानी के जीवन के अनुभव भी बच्चों तक पहुंचाइए। परिवार की ऐसी बातें बच्चों के मन में अपने देश के प्रति अपनापन और गर्व जगाती है। तो याद रखिए, बच्चे वही बनते हैं जो घर में देखते हैं, इसलिए हम अगर चाहेंगे कि अगली पीढ़ी जिम्मेदार नागरिक बने तो शुरुआत हमें अपने से करनी होगी।
1: भाई वतन की मोहब्बत किताबों से नहीं आती, ये वो घर की परवरिश से दिल से उतर जाती है, और माता पिता जो संस्कारों का जो दीप जलाते हैं वही बच्चे आगे चलकर देश का मान बढ़ाते हैं।
0: क्या बात है,
2: कितनी अच्छी है तो कितनी

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को, फिल्म थी राजा और रंग। और रश्मि जी, भारत को जानना है तो सिर्फ उसकी सड़कों और शहरों को मत देखिए, उसकी किताबों के पन्नों को भी पलटिए, क्योंकि इस देश की असली कहानी, उसके इतिहास, संस्कृति और उसकी सभ्यता उन परतों में छिपी है जिन्हें पढ़े बिना भारत को पूरी तरह से समझना मुश्किल है
1: जी। और इसी में एक जो किताब है वो है भारत एक खोज, जो नेहरू जी की लिखी हुई किताब है।
0: और ये हमारे टेक्स्ट बुक में भी था ना, याद है
1: ये इस पर एक दूरदर्शन का जो धारावाहिक बना है वो मुझे लगता है बहुत हमारे श्रोताओं ने देखा होगा। और ये जो किताब है भारत के अतीत की एक व्यापक यात्रा कराती है, प्राचीन सभ्यता से लेकर स्वतंत्रता आंदोलन तक इतिहास, दर्शन, संस्कृति और भारतीय समाज को समझने की एक कोशिश करती है। इसे पढ़ेंगी ना मंजुला तो आपको महसूस होगा कि आज का भारत अपने अतीत से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है।
0: और दूसरी किताब उतनी ही यूनिक है, रामधारी सिंह दिनकर की संस्कृति के चार अध्याय। यह किताब हमें बताती है कि भारतीय संस्कृति केवल एक परंपरा का नाम नहीं है, सदियों के संवाद, संपर्क और सांस्कृतिक आदान प्रदान ने इसे आकार दिया है। दिनकर ने भारतीय संस्कृति के निर्माण में अलग अलग सभ्यताओं और परंपराओं के योगदान को समझने की कोशिश की है
1: जी। और ये जो तीसरी किताब है ये है हरिदत्त वेदालंकार की, भारत का सांस्कृतिक इतिहास। अगर आप भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को अपेक्षाकृत व्यवस्थित ढंग से समझना चाहें तो ये पुस्तक आपके लिए उपयोगी हो सकती है। भाई भारतीय परंपराओं, सामाजिक जीवन, कला और सांस्कृतिक विकास को समझने के लिए बहुत अच्छा, जिसे कहते हैं ना, इन्फॉर्मेटिव आधार देती है ये किताब।
0: और एक और किताब है ए.एल. बाशम की अद्भुत भारत। नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। यह पुस्तक प्राचीन भारत की सभ्यता, समाज, कला, साहित्य, धर्म और जीवन पद्धति के अनेक पहलुओं से परिचित कराती है। तो अगली बार रश्मि जी, कोई अगर जानना चाहे भारत के बारे में ज्यादा से ज्यादा तो उनको हम यही कहेंगे, इंटरनेट पर छोटी छोटी जानकारियां खोजने की बजाय एक अच्छी किताब उठाइए, क्योंकि किसी देश की असली पहचान सिर्फ उसके वर्तमान में नहीं होती, उसके जड़ें, उसके इतिहास, उसके सभ्यता में भी होती है।

0: अभी हम सुन रहे थे मोहम्मद रफी को फिल्म जिगरी दोस्त।
1: और हमारे पास कुछ मेल्स आ गई हैं मंजुला। आप हैं श्रीपाल गोयल बहादुरगढ़ हरियाणा से हमारे साथ जुड़ गए हैं और आप कह रहे हैं कि महात्मा गांधी ने हमें बहुत इंस्पायर किया है, भारत में राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। गांधी जी सत्य और अहिंसा में विश्वास करते थे, उन्होंने असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलनों की शुरुआत की। भाई वाह, और
0: सुदर्शन मुखी जी का भी आया है कि हम तो शहीद भगत सिंह जी के बहुत बड़े फैन हैं, मतलब उनसे प्रभावित हैं, तो भगत जी के फैन बहुत नजर आ रहे हैं। रश्मि जी, आप किन को पसंद करते हो, बताइए।
1: मैं तो हम तो ये कहेंगे जो स्वतंत्रता सेनानी जो भी हैं वो हमारे हमारे सर माथे पर हैं, उनके दिए हुए बलिदान के कारण आज हम स्वतंत्र भारत में बेफिक्री के साथ सांस ले रहे हैं। स्वतंत्रता का जिसे कह रहे हैं, जो उन्होंने जो मेहनत की थी उसकी उसका जो फल है हम उसको तो

0: हम किसको कम कहें,
1: कम
0: किसको
1: कहें
0: ज्यादा
1: किसको
0: कहें,
1: ज्यादा,
0: सभी हमारे
1: बिल्कुल
0: लिए
1: सही
0: पूजनीय
1: कहा,
0: है,
1: बिल्कुल
0: वंदनीय है। और भाई चाहे शहीद भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद जी हो, राजगुरु हो,
1: मुझे
0: सुखदेव हो,
1: हाँ एक बात
0: और
1: ये
0: राम
1: कहना
0: प्रसाद
1: चाहिए।
0: बिस्मिल हो, अशफाक उल्ला खान हो, ऊधम सिंह हो, मंगल पांडे हो, वीर अब्दुल हमीद हो, और साथ में महिला क्रांतिकारी जैसे दुर्गा भाभी, प्रीति लता
1: हाँ बताया था
0: वाजेकर, और कल्पना
1: परसों।
0: दत्त, बीना दास, उषा मेहता, अरुणा आसफ अली, ये सभी हम कहेंगे हमारे लिए खास हैं। और इसके साथ अनगिनत ऐसे भी बलिदानी क्रांतिकारी
1: जिनका
0: हैं
1: नाम हम जानते भी नहीं
0: जी,
1: है,
0: जिन
1: बिल्कुल
0: जो कि अनकहे हैं, अनसुने
1: अनसुने
0: हैं,
1: हैं।
0: उनके बलिदान जो है वो भारतीय इतिहास में दर्ज हैं। उनके लिए भी हम उनको भी उनके प्रति भी हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं FM गोल्ड के स्टूडियो से।
1: और अब रश्मि जी फिर से चलते हैं बारिश की ओर। बारिश का मौसम आते ही, मॉनसून आते ही, बरसात हो ना हो, लेकिन हमारे बाल और हमारे जो त्वचा है वो थोड़ा सा उनका रख रखाव करना जरूरी हो जाता है। ऐसे में तेल, क्रीम या दूसरे सौंदर्य उत्पादों के साथ अपने खाने पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले शुरुआत क्यों ना फ्रूट से करते हैं।
0: भाई आजकल तो देखो जामुन है, पपीता, नाशपाती,
1: अमरूद
0: अमरूद है, अनार, सेब, इनमें से जो भी फल आपके आसपास आसानी से मिल रहे हैं उन्हें रोज की थाली में जगह दीजिए। अमरूद में विटामिन सी होता है जो त्वचा में कोलेजन बनाने में मदद करता है और शरीर में आयरन के अवशोषण के लिए भी बहुत अच्छा है। अब बालों की बात करें मंजुला, तो प्रोटीन बहुत जरूरी है, जैसे दाल, चना, पनीर हो गई, दही हो गई, और दूसरे प्रोटीन खाद्य पदार्थ जो है वो नियमित रूप से लेने चाहिए। आजकल जो सावन का महीना चल रहा है तो सिर्फ बालों पर ही कुछ लगाना काफी नहीं, बल्कि बालों को मजबूत बनाने के लिए शरीर को अच्छा भोजन भी तो चाहिए।
1: बिल्कुल सही। और हमारी रसोई की एक छोटी सी लेकिन काम की चीज है करी पत्ता। इसे सिर्फ तड़के तक सीमित क्यों रखें, चटनी, पोहा, उपमा या दाल में डालिए। करी पत्ते में कई विटामिन होते हैं, खनिज होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बहुत काम के होते हैं। और अब बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स के, सीड्स के। अखरोट, अलसी, कद्दू के बीज और तिल थोड़ी सी मात्रा में रोज या नियमित रूप से इन्हें खाने की आदत डालिए। इसमें बहुत ही अच्छे वाले फैट होते हैं और दूसरे पोषक तत्व होते हैं।
0: हाँ, और आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए भाई, बालों में झड़ने का ये कारण हो सकती है। इसलिए भाई जो चना है, दालें हैं, तिल है, कद्दू के बीज हैं, ड्राई फ्रूट जैसे मंजुला कह ही रही थी, इसको भोजन में शामिल कीजिए। और एक आसान नियम याद रखिए भाई, आयरन वाला अगर भोजन लेते हैं ना तो विटामिन सी वाला भोजन जरूर ले, जैसे चने के साथ थोड़ा सा नींबू ले लें या भोजन के बाद अमरूद ले लें।
1: और मानसून में पानी पीना मत भूलिए। बादल देखकर शरीर की पानी की जरूरत कम नहीं हो जाती दोस्तों। तो इस मौसम अपनी खूबसूरती के लिए सिर्फ आईने के सामने नहीं, खाने की मेज पर भी थोड़ा सा समय दीजिए। मौसमी फल, पर्याप्त प्रोटीन, मेवे और बीज, आयरन वाले खाद्य पदार्थ और रोज का संतुलित भोजन, यही है प्राकृतिक खूबसूरती की अच्छी शुरुआत।
0: क्योंकि भाई मंजुला, एक अच्छा जो सौंदर्य उत्पाद है वो आपको बाहर से संवार सकता है, लेकिन भाई सही भोजन अगर आप लेते हैं तो वो आपके शरीर को भीतर से पोषण देगा।

0: और अभी कुछ मेल्स और आ गए हैं रश्मि जी, मैं देख रही हूँ कि आप उसको पढ़ना चाह रही हैं,
1: तो तुम ही पढ़ दो पहले।
0: हाँ, तो अनिल जी लिखते हैं, अनिल मेहता इनका नाम है, भगत सिंह की अतुलनीय देशभक्ति और उनके साहस की वजह से प्रभावित हूँ। मात्र 30 साल की छोटी सी उम्र में देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लेना उनकी असीम राष्ट्रभक्ति को दिखाता है।
1: और उमेश कुमार खयाला से हमारे साथ जुड़ गए, कह रहे हैं कि मेरे जो प्रिय नेता है वो है सुभाष चंद्र बोस, और भगत सिंह जी जो है उनसे भी मैं बहुत प्रभावित हूँ।
0: और डॉक्टर राजेश्वर राव भी लिख रहे हैं कि लाल बाल पाल उनके जो फेवरेट पावरफुल इंस्पिरेशन जो हैं वो थे, उनमें से एक फ्रीडम स्ट्रगल उन्होंने किया, और भी बहुतों का नाम लिखा है, हमारे पास उतना वक्त नहीं है, फटाफट
1: जल्दी से एक और मेल पढ़ देते हैं। हनी हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं कि मैं जो प्रेरणा लेता हूँ भगत सिंह से, और क्योंकि जो उनकी जो उम्र थी बहुत कम थी जब उन्होंने फांसी का फंदा चूमा, और कहते हैं कि मैं कभी भी कल्पना नहीं कर सकता कि कोई इतने किसी के अंदर इतनी निर्भीकता भी हो सकती है। और क्योंकि ये मैं अनुवाद चलते चलते कर रही हूँ, उन्होंने अंग्रेजी में ये मेल लिखा हुआ है, और कहते हैं उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी। और एक और मेल मैं पढ़ देती हूँ, सुगंधा राव, वो कह रहे हैं भाई भगत सिंह का फिर नाम आ गया, वो कह रहे हैं कि युवाओं के लिए उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद कर रही है।

0: अभी आप सुन रहे हैं आशा भोंसले की आवाज में ये गाना। इसी खूबसूरत गीत के साथ आज का सफर को हम यही विराम देते हैं। दीजिए मंजुला और
1: रश्मि को
0: इजाजत। नमस्कार।

0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में विपक्ष के शोर शराबे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति, योग्यता में एक रूपता तथा प्रशासन और कामकाज में कुशलता बढ़ाने, स्वतंत्रता पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्रावधान करता है। इसके तहत राष्ट्रीय अधिकरण आयोग के गठन का भी प्रस्ताव है। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे, लेकिन सदन में लगातार नारेबाजी के कारण कार्यवाही पहले 12 बजे फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का आंदोलन आज 17वें दिन भी जारी है। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से विधानसभा की ओर मार्च किया। सरकार का दावा है कि विद्यार्थियों की 98% मांगे स्वीकार कर ली गई हैं। मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुरानी विधानसभा के पास पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी और नई विधानसभा की ओर बढ़ते रहे। रांची में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। अनशनरत छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को एम्बुलेंस से विधानसभा लाया गया, जहां उन्होंने स्ट्रेचर पर समर्थकों के साथ मार्च में हिस्सा लिया। 6 विद्यार्थी अब भी अनिश्चितकालीन अनशन है। सरकारी क्रय विक्रय जेम पोर्टल पर कुल व्यापार का मूल्य पिछले दशक में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जेम पोर्टल पर 12 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उपक्रम पंजीकृत हैं। इनमें 2 लाख से अधिक महिलाएं हैं। 42,000 से अधिक स्टार्टअप भी पोर्टल पर पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल ने डिजिटल खरीद के माध्यम से जवाबदेही मजबूत की है। भारत में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 300 गीगावाट से अधिक हो गई है। 31 जुलाई तक हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प के अनुपालन का आग्रह किया है। संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष के समारोहों का प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सिंह दिवस पर कहा कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का आलेख साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सामुदायिक भागीदारी में वन्य जीव संरक्षण की सरकार की प्रतिबद्धता विशिष्ट प्रजातियों को पीढ़ियों तक संरक्षित रखने का प्रेरक उदाहरण है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस आलेख में कहा है कि वर्ष 2015 में 523 शेरों की संख्या बढ़कर वर्ष 2025 में 891 हो गई है। इटली के बोलोनिया में कश्मीरी मूल के हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में निर्दोष नागरिकों की हत्या की निंदा की। उन्होंने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ नारे लगाए और नागरिक संगठन ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ एकजुटता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 112 अंक बढ़कर 78,611 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप। कलाकार बेमिसाल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज कलाकार बेमिसाल में हम याद करेंगे एक ऐसे संगीतकार को जो हिंदी फिल्म संगीत में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आए। ये वो हैं कि जिनके सिखाए हुए आर्टिस्ट और कंपोजर्स ने खूब नाम कमाया हिंदी सिनेमा में। दोस्तों, आज का जो संगीत है वो बहुत ही अलग होने वाला है। आज के जो गाने हैं वो आपको एक अलग ही एरा में लेकर जाएंगे, बहुत बहुत बहुत बहुत पीछे। सुनिए जरा।

लता मंगेशकर की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना महल फिल्म से, जिसका संगीत तैयार किया था खेमचंद प्रकाश ने, जिनकी आज हम बातें करने वाले हैं कलाकार बेमिसाल में। दोस्तों, इस प्रोग्राम को करने से पहले मैं अपने दोस्तों से बात कर रही थी। मैंने कहा काफ़ी पुराने एरा के गाने मुझे सुनाने हैं और इस एरा के गाने मैं कम ही सुनती हूँ, पता नहीं कैसे लगने वाले हैं हमारे लिसनर्स को। तो मेरी वो दोस्त भी प्रेजेंटर हैं यहाँ पर, उन्होंने कहा कि जब इन लोगों को आप सुनना शुरू करेंगे ना, 40s और 30s के जो सिंगर्स रहे हैं, तो एक अलग ही सुकून मिलेगा, एक अलग ही आपको रूहानी सी फीलिंग आएगी। तो वाकई में ये जो गाना मैंने सुना ना महल फिल्म का, ये मुझे कुछ ऐसा ही फील दे गया। शायद आप इत्तेफाक रखते हो मेरी बात से। तो दोस्तों, चलिए लौट चलते हैं उसी बात की तरफ जो मैं आज करने वाली थी आपसे। आज हम याद करने वाले हैं खेमचंद प्रकाश को। दोस्तों, खेमचंद प्रकाश एक बहुत ही मशहूर संगीतकार रहे हैं अपने ज़माने के। खेमचंद प्रकाश का जन्म 12 दिसंबर 1907 को बीकानेर राजस्थान में हुआ था। उनके पिता राजस्थान के शाही दरबार में ध्रुपद गायन किया करते थे और कथक डांसर हुआ करते थे। खेमचंद प्रकाश को संगीत की प्रेरणा अपने परिवार से ही मिली, अपने पिता से ही उन्होंने संगीत की शिक्षा ली और 13-14 साल की उम्र रही होगी उनकी। पहले वो बीकानेर राजघराने में गायक के तौर पर जुड़ गए, फिर नेपाल राजघराने के लिए गाने लगे।

केएल सहगल साहब के जो दीवाने हैं उनके लिए तो आज का जो प्रोग्राम है वो ट्रीट की तरह है ना। केएल सहगल साहब की आवाज में बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना, फिल्म का नाम है भंवरा, और इस गाने को तैयार किया था, इसका संगीत दिया था खेमचंद प्रकाश ने। दोस्तों, हिंदी फिल्म संगीत के लिए काम करना खेमचंद प्रकाश के लिए एक इत्तेफाक ही था। वो किसी काम से कोलकाता आए और यहीं के होके रह गए। कोलकाता में उन्होंने न्यू थिएटर्स ज्वाइन कर लिया, जहां उन्हें नए रास्ते मिले अपनी मंजिल से जुड़ने के लिए। कोलकाता में ही उनकी मुलाकात संगीतकार तिमिर बारन से हुई, जो उस वक्त देवदास, जो 1935 वाली है देवदास। दोस्तों, हिंदी फिल्म संगीत के लिए काम करना खेमचंद प्रकाश के लिए एक इत्तेफाक ही था। वो किसी काम से कोलकाता आए और यहीं के होके रह गए। कोलकाता में उन्होंने न्यू थिएटर्स ज्वाइन कर लिया, जहां उन्हें नए रास्ते मिले अपनी मंजिल से जुड़ने के लिए। कोलकाता में ही उनकी मुलाकात संगीतकार तिमिर बारन से हुई, जो उस वक्त देवदास, जो 1935 वाली है देवदास, उस पर काम कर रहे थे। खेमचंद की जो संगीत को लेकर जानकारी थी और डेडिकेशन था, उसने तिमिर को बहुत प्रभावित किया, और फिर उन्होंने खेमचंद प्रकाश को अपने पास असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर रख लिया।

0: दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा गाना आपने सुना खुर्शीद की आवाज़ में, और डीएन मधोक ने इस गाने को लिखा था और खेमचंद प्रकाश ने इस गाने को संगीत दिया था। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप। कलाकार बेमिसाल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम आपको सुना रहे हैं 40 और 50 के दशक के गाने। जी हाँ, सैगल साहब के ज़माने में आपको लेकर गए हैं आज हम। और आज हम बातें कर रहे हैं संगीतकार खेमचंद प्रकाश की, जो कि हिंदी सिनेमा के सबसे शुरुआती दौर के बड़े संगीतकार थे।

महल फिल्म का ये गाना आपने सुना राजकुमार की आवाज़ में, और ये जो फिल्म है ये 1949 में रिलीज हुई थी। शायद आप जानते हों कि महल जो फिल्म है ये हिंदी सिनेमा की पहली हॉरर फिल्म मानी जाती है, और इस फिल्म में नजर आए थे मधुबाला और अशोक कुमार। इस फिल्म की बहुत ही खास बात रही इसका संगीत, जो कि

हेमचंद प्रकाश ने कंपोज किया था, लेकिन एक बड़ी ही अफसोसनाक, एक बड़ी ही दर्द भरी कहानी है इस फिल्म के संगीत की, जो मैं आपको प्रोग्राम में थोड़ा आगे सुनाऊंगी। उससे पहले खेमचंद प्रकाश के करियर के शुरुआती दिनों की बात करते हैं। दोस्तों, खेमचंद प्रकाश ने करियर के शुरुआती दिनों में एक दो गाने भी गाए हैं, जैसे कि स्ट्रीट सिंगर फिल्म आई थी 1938 में। इस फिल्म के लिए खेमचंद प्रकाश ने एक कॉमेडी जो गाना था उसको आवाज दी थी, और बहुत ही जल्द खेमचंद प्रकाश मुंबई के कुछ लोगों के कांटेक्ट में आ गए। उन्होंने वहां जाने का मन बना लिया। ये साल 1939 की बात है। उनको अपनी पहली फिल्म भी बहुत जल्दी मिल गई, हिंदी फिल्म वहां पर, जिसका संगीत उन्होंने अकेले कंपोज किया था। इस फिल्म का नाम था मेरी आंखें। इसके साथ ही उन्होंने एक और फिल्म साइन की इसी साल, जिसका नाम था गाजी सलाउद्दीन। ये दोनों ही फिल्म्स रंजीत मूवी टोन फिल्म स्टूडियो की थी। इस स्टूडियो का खेमचंद के करियर में बहुत बहुत बड़ा योगदान माना जाता है।

میرم دروما دلشو بینی سو هستینی سو مدورم هاشینی سو کدورم.

मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज तथा 104 मेगाहर्ट्ज एफएम पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026 अगस्त महीने की 10वीं तारीख दिन है सोमवार। आकाशवाणी के तवांग केंद्र से आज का हमारा प्रसारण अब आरंभ होता है। आज के इस प्रसारण को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए उपस्थित रहेंगे प्रसारण सहायक श्रीमती सांगी चोमू, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक हैं श्री लाम त्रिंग, श्री कामे यंगफो, श्री हेमांता स्वर्गिरी और सुश्री शिखा डेका, ट्रांसमीटर में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक हैं श्री न्यूटन बोरा और श्री अशुत बर्मन, मोनपा में उद्घोषक हैं श्री लोपसांग तोपदेन तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज का हिंदी उद्घोषक लाम टाशी। आकाशवाणी सुन रहे आप सभी श्रोताओं का आज के हमारे इस प्रसारण में हार्दिक स्वागत है।

मेरी मूव के मीटर बैंड पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2 बज रहे हैं। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अंग्रेजी एवं हिंदी में दोपहर समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज कहा कि सरकार विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने ये बात कही।
1: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
0: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग की थी।
2: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
0: इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा में आज शोर शराबे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पेश किया गया। दिन के 12 बजे तक स्थगित रहने के बाद सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया। ये विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता तथा नियुक्ति में एक रूपता सुनिश्चित करने और प्रशासन तथा कामकाज में कुशलता, स्वतंत्रता और पारदर्शिता बढ़ाने का प्रावधान करता है। इसके तहत राष्ट्रीय अधिकरण आयोग के गठन का भी प्रस्ताव है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खदान और खनिज विकास तथा नियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक 1957 के संबंधित अधिनियम में संशोधन करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम संशोधन विधेयक 2026 सदन के समक्ष रखा। ये विधेयक केरल राज्य के नाम में परिवर्तन का प्रावधान करता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसके माध्यम से 1962 के संबंधित अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि संबंधित हितधारकों से परामर्श पूरा होने के बाद राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का मसौदा अंतिम रूप देने के चरण में है। फिलहाल दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। केंद्रीय मंत्री और रांची से सांसद संजय सेठ ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच का आदेश देने में राज्य सरकार की अनिच्छा पर सवाल उठाया है। संसद भवन परिसर में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री सेठ ने कहा कि यदि विद्यार्थी ये परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं तो राज्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वे इससे मानने से क्यों इनकार कर रही है।
3: छात्र अडिग हैं कि हम तो जाएंगे और विधानसभा घेरेंगे। कई मांग है कि CBI जांच करा दो और JSSC के एग्जाम कैंसिल करा दो, जो दोषी है उनको पकड़ो और ED जांच करा दो। सरकार को क्या आपत्ति है।
0: भाजपा सांसद तरुण चुघ ने विपक्ष के कुछ नेताओं पर झारखंड में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को जानबूझकर नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये नेता इस मुद्दे पर पूरी तरह मौन है जबकि राज्य में उनके गठबंधन सहयोगियों की सरकार है।
4: मेरा निवेदन है कि छात्रों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए और मेरा सभी से निवेदन है, आंदोलन हम सबका राइट है, सत्याग्रह हम सबकी ताकत है, लेकिन हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए।
0: उधर झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में जारी विद्यार्थी आंदोलन का आज 17वां दिन है। विद्यार्थी विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं। पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: JPSC JSSC रिफॉर्म मंच के नेतृत्व में छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं और JSSC CGL परीक्षा रद्द करने तथा कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि छात्रों की अंट

0: 95% मांगों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन छात्र अपनी प्रमुख मांगों पर अड़े हुए हैं। मार्च के दौरान छात्रों ने पुरानी विधानसभा के पास बैरिकेडिंग पार की और 7वें तथा आखिरी बैरिकेडिंग तक पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अनशनरत छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को एम्बुलेंस से विधानसभा लाया गया, जहां उन्होंने स्ट्रेचर पर समर्थकों के साथ मार्च में हिस्सा लिया। 6 छात्र अब भी अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू समेत कई बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। तीनों जेपीएससी सदस्यों के इस्तीफे स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन और तेज हुआ है। नविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प के अनुपालन का आग्रह

0: ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प के अनुपालन का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
1: श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित हैं और वो भी ऐसे समय में जब हम इसकी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देश भर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। मंत्रालय ने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में राष्ट्रगीत का उत्सव मनाने का अवसर प्रदान करेगी। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत कश्मीर के सभी जिलों में तिरंगा यात्राएं और देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: अभियान की शुरुआत के साथ ही पुलवामा के त्राल इलाके, अनंतनाग, बारामुल्ला और कई दूसरी जगहों पर तिरंगा यात्राएं निकाली गई, जिनमें युवाओं, छात्राओं, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। श्रीनगर में भी इस अभियान के तहत एक बड़ी तिरंगा रैली की तैयारी चल रही है। कश्मीर भर में जिला प्रशासन आने वाले दिनों में कई तिरंगा यात्राएं और जन भागीदारी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। स्थानीय लोग भी इस अभियान के तहत तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उत्साहपूर्वक इसमें भाग ले रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: बिहार में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज राजधानी पटना में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में गांधी मैदान स्थित जेपी सर्कल से शुरू यह यात्रा कारगिल चौक के पास समाप्त हुई। यात्रा में स्कूली बच्चों, एनसीसी और एनएसएस कैडेट्स और आम लोगों ने बड़ी संख्या में भागीदारी की। इस दौरान पूरा शहर तिरंगे के रंगों में सराबोर होने के साथ ही वंदे मातरम और हर घर तिरंगा के नारों से गुंजायमान रहा। इधर तिरंगा यात्रा शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों से इस अभियान के तहत जिला, नगर निकाय और पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाली यात्राओं में शामिल होने का आग्रह किया। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उधर नागालैंड के कोहिमा में आज भारतीय जनता पार्टी की नागालैंड इकाई ने हर घर तिरंगा दोपहिया रैली का आयोजन किया। अभी समाचार मिला है कि लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। सरकारी क्रय विक्रय जेम पोर्टल पर कुल व्यापार का मूल्य पिछले दशक में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जेम पोर्टल पर 12 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उपक्रम पंजीकृत हैं, इनमें 2 लाख से अधिक महिलाएं हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ, असम और मेघालय में भी कल तक तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में कल तक बिजली चमकने और गरज के साथ बौछारें पड़ने की स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा आज शाम दिल्ली के कई स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज सुबह से रुक रुक कर वर्षा हो रही है। तेज बारिश के कारण हुए भूस्खलन से राज्य के कई हिस्सों में 100 से अधिक सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
4: हिमाचल प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और राजधानी शिमला सहित राज्य के अनेक क्षेत्रों में रुक रुक कर हल्की वर्षा हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज प्रदेश के 4 जिलों कांगड़ा, सिरमौर, मंडी और कुल्लू में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर लोगों को एहतियात बरतने और नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई।

0: है। इस बीच भारी वर्षा से हुए भूस्खलन के कारण राज्य में 100 से अधिक सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं, जबकि 255 बिजली ट्रांसफार्मर और लगभग 20 पेयजल परियोजनाएं भी प्रभावित हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सिंह दिवस पर कहा कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का आलेख साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सामुदायिक भागीदारी से वन्य जीव संरक्षण की सरकार की प्रतिबद्धता विशेष प्रजातियों को पीढ़ियों तक संरक्षित रखने का प्रेरक उदाहरण है। श्री भूपेंद्र यादव ने अपने आलेख में कहा है कि वर्ष 2015 में 523 शेरों की संख्या बढ़कर वर्ष 2025 में 891 हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
2: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
1: इटली के बोलोनिया में कश्मीरी मूल के हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में निर्दोष नागरिकों की हत्या की निंदा की। दुनिया के विभिन्न देशों में कश्मीरी प्रवासी समूहों के ऐसे ही विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 86 अंक बढ़कर 78,585 जबकि निफ्टी 28 अंक की बढ़त के साथ 24,599 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की विपक्ष से अपील। गृह मंत्री अमित शाह को संसद में उठाए जा रहे मुद्दों पर बिना शोर शराबे के वक्तव्य देने दें। अधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने के लिए लोकसभा में अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया गया। 3 अन्य विधेयक भी पेश। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का विधानसभा की ओर मार्च। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में तिरंगा रैलियों का आयोजन। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। और आज विश्व सिंह दिवस है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित, अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर की 2:30 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है भक्ति गीतों का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में आज आप सुनेंगे पंडित जसराज की आवाज में श्री कृष्ण भक्ति भजन। तो लीजिए, पेश है कार्यक्रम वंदना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदना के अंतर्गत पंडित जसराज चंद श्री कृष्ण भक्ति भजन आकाशवाणी के तवांग केंद्र से जारी है कार्यक्रम वंदना।

पंडित जसराज की इन्हीं कृष्ण भक्ति भजन के साथ ही भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बजे हैं। चलिए अब सुनते हैं अलग अलग प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत आज आप आनंद लेंगे संगम लिंगी और ओतोके म्यूली के आवाजों में चंद आधुनिक ईदू मिश्मी नगमे। तो लीजिए श्रोताओं, पेश है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत संगम लिंगी और ओतोगे म्यूली से चंद आधुनिक ईदू मिशमी नगमों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से जारी है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे संगम लिंगी और ओतोके म्यूली से चंद आधुनिक ईशु ईदु मिशमी नगमे। इसके साथ ही अलग अलग प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत अब समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। श्रोताओं, आप सुनिए कार्यक्रम मेरी बात के अंतर्गत पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय तवांग के 11वीं कक्षा की छात्रिका कुमारी दोर्जी ड्रेमा से स्वच्छ भारत अभियान विषय पर एक वार्ता।
1: आकाशवाणी तवांग से प्रसारित दैनिक कार्यक्रम मेरी बात में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं कुमारी दोर्जी ड्रेमा, पीएम श्री जेनवी तवांग में 11वीं विज्ञान की छात्र हूँ। आज इस कार्यक्रम में मेरी वार्ता का विषय है स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है हमारे देश को साफ, स्वस्थ और सुंदर बनाना है। जैसे कि महात्मा गांधी जी ने कहा था, स्वच्छता हमारे स्वस्थ और सभ्यता का प्रतीक है। सोचिए, अगर हमारी सड़कें गंदी हो, कचरा इधर उधर बिखरा हो और नदी नालों में गंदा हो तो हमारा देश कैसा दिखेगा? निश्चित रूप से यह न केवल अस्वस्थ होगा बल्कि हमारे छवि पर भी प्रभाव डालेगा। इसलिए स्वच्छता केवल सरकार का काम नहीं है, यह हमारी भी जिम्मेदारी है। स्वच्छ भारत सुंदर भारत। स्वच्छ भारत केवल सफाई अभियान नहीं है, यह एक जागरूकता आंदोलन है। जब हम अपने घर और मोहल्ले को साफ रखते हैं तो हम अपने स्वस्थ और अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान भी रखते हैं। और स्वच्छता का मतलब सिर्फ सफाई रखना नहीं है, इसका मतलब यह भी होता है प्लास्टिक को अपने जीवन में कम से कम उपयोग करना, पेड़ को ज्यादा से ज्यादा लगाना और पानी को साफ रखना भी होता है। कभी कभी हम

0: विद्यार्थी जीवन में कुछ पर्सनल सफाई में भी लापरवाही हो जाते हैं। अगर हम अपने डेस्क और बेंच को साफ न रखें तो उसका असर स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। इसलिए छोटी छोटी आदतें ही बड़ा बदलाव लाता है। कचरा अपने स्थान पर, तभी जीवन होगा स्वस्थ और प्यारा। और मैं आप सभी को एक मजेदार की बात बताना चाहती हूँ कि क्या कभी आप सभी ने कभी ध्यान दिया है कि अगर हम सफाई का ध्यान रखते हैं तो मच्छर, कीड़े और बुरे गंध हमारे पास कम आती है। तो साफ सुथरी आदत न सिर्फ हमें स्वस्थ देती है बल्कि परेशानियों से भी बचाती है। अंत में मैं आप सभी को यह कहना चाहती हूँ कि आइए हम सभी स्वच्छ भारत मिशन में सक्रिय भागीदार बने, अपने आस पड़ोस को साफ रखें, दूसरों को जागरूकता करें और इस मिशन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, सशक्त भारत। जय हिंद, जय भारत।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय तवांग के 11वीं कक्षा की छात्रिका कुमारी दोर्जी ड्रमा से स्वच्छ भारत अभियान विषय पर एक वार्ता।
2: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
3: बेटा,
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
3: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
3: चलो,
2: कहाँ
3: एडमिशन कराने?
4: खाता हुआ एक्टिव,
5: आरबीआई कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:34 हुए हैं। आइए अब आनंद लेते हैं महिलाओं पर आधारित गीतों का कार्यक्रम नारी संगीत का। नारी संगीत कार्यक्रम का पहला नगमा सुनिए चक दे इंडिया फिल्म से हेमा सरदेसाई की आवाज में। जयदेव सैनी के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है सलीम सुलेमान ने।

अगला नगमा सुनिए श्रेया घोषाल, उदित नारायण और विशाल शेखर की आवाजों में। स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म के इस गीत को लिखा है अन्विता दत्त ने और संगीत दिया है विशाल शेखर ने।

नारी संगीत कार्यक्रम का अंतिम नगमा पेश है आई हेट लव स्टोरी फिल्म से श्रेया घोषाल और सोना महापात्रा की आवाजों में। विशाल शेखर द्वारा संगीत इस गीत को लिखा है कुमार ने।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:51 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है फिल्म जगत के नव गीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी।

श्रोताओं, गीत मंजरी कार्यक्रम का पहला नगमा सुनिए राबता फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज में। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है प्रीतम ने।

अगला नगमा पेश है अर्को की आवाज में। कपूर एंड सन्स फिल्म के इस गीत को लिखा है मनोज मुंतशिर ने और संगीत से सवारा है अर्को ने।

तमाशा फिल्म से भी आप सुन रहे थे इरशाद कामिल का लिखा नगमा, स्वर अरिजीत सिंह और अलका याग्निक के तथा संगीतकार एआर रहमान। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा सुनिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म से बेनी दयाल, नाजिया हसन और सुनिधि चौहान की आवाजों में, बोल अन्विता दत्त के और संगीत विशाल शेखर का।

कार्यक्रम गीत मंजरी के अंतर्गत फिल्म जगत के चंद नव गीतों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से कार्यक्रम को जारी रखते हुए अगला नगमा सुनते हैं मुन्ना माइकल फिल्म से विशाल मिश्रा और सुनिधि चौहान की आवाजों में। गीतकार कुमार और संगीत दिया है विशाल मिश्रा ने।

यासर देसाई और अल्तमाश फरीदी की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे जबरिया चोरी फिल्म का नगमा, बोल रेशमी विराग के और संगीत तनिष्क बख्जी का। कार्यक्रम का अगला नगमा सुनिए सूर्यवंशी फिल्म से अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाजों में। जैम 8 द्वारा संगीतित इस गीत को लिखा है रेशमी विराग ने।

छिछोरे फिल्म से अभी आप सुन रहे थे गीत मंजरी कार्यक्रम का अंतिम नगमा तुषार जोशी के आवाज में, बोल अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत प्रीतम का। इसके साथ ही श्रोताओं, फिल्म जगत के नव गीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:30 हुए हैं। आइए अब आनंद लेते हैं शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम राग रंग के अंतर्गत पंडित रोनू मजुमदार से बांसुरी वादन का। राग है मध्यालय तथा तबले पर संगत दिया है श्री दुर्गा प्रसाद ने।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे मध्यालय राग पर पंडित रोनू मजुमदार से बांसुरी वादन। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम राग रंग अब समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:45 हो रहे हैं। श्रोताओं, आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: पहले मुख्य समाचार। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की विपक्ष से अपील, गृह मंत्री अमित शाह को संसद में उठाए जा रहे मुद्दों पर बिना शोर शराबे के वक्तव्य देने दे। अधिकरणों में कामकाज में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने के लिए लोकसभा में अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया गया, 3 अन्य विधेयक भी पेश। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ पासीघाट स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में आयोजित पूर्वोत्तर राज्यों के कुलपतियों की राउंड टेबल बैठक के उद्घाटन सत्र में भाग लिया। गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधीन अरुणाचल प्रदेश जनगणना संचालन निदेशालय ने आज तवांग में जिला जनगणना पुस्तिका 2027 पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में तिरंगा रैलियों का आयोजन। इधर अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पारनायक रिटायर ने राजधानी ईटानगर के नीति विहार स्थित गोल्डन जुबली स्टेट बैंकेट हॉल से राज्यव्यापी हर घर तिरंगा अभियान का किया शुभारंभ। अरुणाचल प्रदेश के खोंसा ईस्ट विधायक वांगलाम साविन ने मुख्य सचिव मनीष कुमार गुप्ता की उपस्थिति में खोंसा में तिरंगा अभियान बुलेट रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और उज्बेकिस्तान में ताशकंद में आयोजित एशियन जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय वेटलिफ्टर महाराजन अरुमुगा पांडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में जीता रजत पदक। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने ये बात कही।
1: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
0: इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित होती रही। लोकसभा में आज अधिकरण सूचना विधेयक 2026 पेश किया गया। दिन में 12 बजे तक इसे स्थगित रहने के बाद सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया। ये विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता और नियुक्ति में एकरूपता सुनिश्चित करने तथा प्रशासन और कामकाज में कुशलता, स्वतंत्रता और पारदर्शिता बढ़ाने का प्रावधान करता है।

0: इसके तहत राष्ट्रीय अधिकरण आयोग के गठन का भी प्रस्ताव है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खदान और खनिज विकास तथा नियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक 1957 में संबंधित अधिनियम में संशोधन करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम संशोधन विधेयक 2026 सदन के समक्ष रखा। ये विधेयक केरल राज्य के नाम में परिवर्तन का प्रावधान करता है। लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि संबंधित हितधारकों से परामर्श पूरा होने के बाद राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का मसौदा अंतिम रूप देने के चरण में है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में आयोजित पूर्वोत्तर राज्यों के कुलपतियों की राउंड टेबल बैठक में उद्घाटन सत्र में भाग लिया। बैठक में पूर्वोत्तर भारत में विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति एकत्र हुए हैं, जिसमें उच्च शिक्षा में परिवर्तन, नवाचार, सहयोग और भविष्य के लिए तैयार भारत की रणनीतियां विषय पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस संवाद का संयुक्त आयोजन एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज AIU नई दिल्ली तथा एक्सटेंशन एंड डिस्टेंस लर्निंग निदेशालय द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय परिसर पासीघाट द्वारा किया जा रहा है। बैठक के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि पूर्वोत्तर को ज्ञान का सिर्फ उपभोक्ता बने रहने के बजाय ज्ञान का निर्माता बनकर उभरना होगा। उन्होंने कहा है कि बैठक में इस बात पर चर्चा की गई है कि कैसे यहाँ के विश्वविद्यालय सिर्फ डिग्री देने वाले संस्थानों से बदलकर समस्याओं का समाधान करने वाले संस्थान बन सकते हैं। AI और इनोवेशन से लेकर स्थानीय ज्ञान, एंटरप्रेन्योरशिप, बायोडाइवर्सिटी और सीमावर्ती इलाकों के विकास तक हमारी अनोखी चुनौतियां रिसर्च और समाधान के लिए अवसर बन सकती है। गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधीन अरुणाचल प्रदेश जनगणना संचालन निदेशालय ने आज तवांग में उपायुक्त कार्यालय कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला जनगणना पुस्तिका DCHB 2027 पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनगणना के उपनिदेशक फारिलीन पासा ने जनगणना संचालन के जूनियर सलाहकार डेनियल जॉन्स ने क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया तथा उन्हें जिला जनगणना पुस्तिका 2027 की तैयारियों से संबंधित विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया। इस प्रशिक्षण जनगणना 2027 के लिए क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की तैयारियों और क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया, जिसका उद्देश्य जिला स्तर से संबंधित महत्वपूर्ण जनसांख्यिकी और सामाजिक आर्थिक ज्ञानकारी और व्यवस्थित एवं सटीक संकलन सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प को नवीकृत करने का आग्रह किया।
1: पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है, अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है।
0: देशभक्ति की भावना के साथ अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल KT पारनायक रिटायर्ड ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उप मुख्यमंत्री चाउना मेन के साथ राजधानी ईटानगर के नीति विहार स्थित गोल्डन जुबली स्टेट बैंकवेट हॉल से राज्यव्यापी हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया। यह आयोजन 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन की स्मृति में मनाए जाने वाले अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर भी आयोजित की जा रही है। इस अवसर पर राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने युवाओं को राष्ट्रध्वज सौंपा तथा प्रतिभागियों के साथ राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी किया। राज्य में कला एवं संस्कृति विभाग के स्टाफ सलाहकारों ने हर घर तिरंगा अभियान के 5वें संस्करण के उपलक्ष में देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। अपने संबोधन में राज्यपाल ने प्रत्येक नागरिक से राष्ट्रध्वज को गर्व के साथ फहराने और अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि यह एक जन आंदोलन है जो देशभक्ति की भावना को फिर से जागृत करने के साथ साथ भावनात्मक एकीकरण को मजबूत करता है। कार्यक्रम के तहत राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने पूर्व सैनिकों और गांव बूढ़ा को राष्ट्र के प्रति उनके सेवाओं तथा समाज में उनके योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया। अरुणाचल प्रदेश के खोंसा ईस्ट विधायक वांगलाम साविन ने मुख्य सचिव मनीष कुमार गुप्ता की उपस्थिति में खोंसा में तिरंगा अभियान बुलेट रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत आयोजित की गई है। बुलेट रैली का संयुक्त आयोजन तिराप जिला प्रशासन ने तिराप जिले के AR-13 तिराप राइडर्स और जारो राइडर्स टीमों के सहयोग से

0: किया। तिरंगा अभियान बुलेट रैली का नेतृत्व करते हुए मुख्य सचिव ने तिरा के लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि प्रत्येक घर पर तिरंगा गर्व के साथ फहराया जाए। उन्होंने लोगों से अभियान में पूरे उत्साह के साथ भाग लेने और देशभक्ति, एकता तथा राष्ट्र गौरव के मूल्यों का उत्सव मनाने की भी अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अपने अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा है कि सम्मान केवल पदक जीतने में ही नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में भी है।
1: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
0: उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियन जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय क्वालिफाइड वेटलिफ्टर महाराजन अरमुगामलन पांडियन ने पुरुषों में 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक प्राप्त किया है। महाराजन ने अपना व्यक्तित्व सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 285 किलोग्राम वजन उठाया, जिसमें स्नैच और में 128 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 157 किलोग्राम शामिल है। वियतनाम के ख्वांग थाच ने कुल 291 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सिंह दिवस के अवसर पर कहा है कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके प्रवासीय और विस्तार में विस्तार हो रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज आलेख साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा है कि सामुदायिक भागीदारी से वन्यजीव संरक्षण की सरकार की प्रतिबद्धता विशिष्ट प्रतिभाओं को पीढ़ियों तक संरक्षित रखने का प्रेरक उदाहरण बनेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: This is Akashvani, the news read by Indu Chuku. Prime Minister Narendra Modi has urged citizens to participate enthusiastically in the Har Ghar Tiranga movement and renew their collective resolve to contribute towards building a Vikshit Bharat. In a social media post, Mr. Modi said, "Our tricolor is our pride and a constant source of inspiration to always give our best for the nation." After the Prime Minister's call, the Har Ghar Tiranga movement is gaining momentum across the nation. Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju today said that the government is ready for a detailed discussion in Parliament on the students' protest and related issues. Speaking to the reporters at Parliament premises, Mr. Rijiju appealed to the opposition to allow the Home Minister Amit Shah to make his statement and respond to the issues raised by members without any disruption. The gross merchandise value of the government e-marketplace has increased from 422 crore rupees to over 155,000 crore rupees in the last decade. In a social media post, Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal said that over 12 lakh micro and small enterprises, including more than 2 lakh led by women and 42,000 startups are registered on the portal. Chief of the Naval Staff, Admiral Krishna Swaminathan, is on a 4-day official visit to Mauritius starting today. The Ministry of Defence informed that the visit is part of India's continued engagement to strengthen bilateral maritime cooperation and deepen defence ties with Mauritius. During the visit, he will interact with senior leadership of the government of Mauritius and hold discussions on matters of mutual interest such as maritime security, defense cooperation, capacity building and military collaboration. Delhi police have busted an organized cyber fraud network and arrested 9 people in connection with a series of cyber crime cases. The accused were operating from Meerut, Ghaziabad and Jaipur. Briefing media in New Delhi today, DCP Central Rohit Rajbir Singh said that around 19 complaints registered on the National Cyber Crime Reporting Portal have so far been linked to the network. The complaints originated from Maharashtra, Karnataka, Bihar, Tamil Nadu, Telangana and Orissa, among other states. Chinese authorities have evacuated

मीडियम वेव के मीटर बैंड पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 6:10 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा में आज आप सुनेंगे हमारे केंद्र के आज के शेष एवं कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां। तो चलिए पहले आपको आज के शेष कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। अब से कुछ ही पलों में यानी संध्या के 6:20 पर कार्यक्रम शेदुन देरिम में सुनिए श्री थुप्तन सिंह शास्त्री और साथियों से चंद बौद्ध भक्ति भजन। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार 7:00 तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। कृषि संबंधित साप्ताहिक कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण में सुनिए गोमकांग गांव के एक पूर्व सैनिक एवं प्रगतिशील किसान श्री सिंह तोबगेल से उनके अनुभवों के विषय पर हुई एक भेंट वार्ता आज शाम 7:10 पर। वीर सैनिकों पर आधारित कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत में आनंद लीजिए एक रिश्ता फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक, तुमसे मिलके रॉन्ग नंबर फिल्म से अनुराधा पोतवाल और कुमार सानू और नाम गुम जाएगा फिल्म से अनुराधा पोतवाल और उदित नारायण के आवाजों में चंद हिंदी फिल्मी नगमे आज शाम 7:30 पर। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार शाम 7:45 पर तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। आज शाम 7:55 पर कार्यक्रम देशभक्ति गीत में सुनिए बुज द प्राइड ऑफ इंडिया फिल्म का एक देशभक्ति नगमा। रात्रि 8:00 आनंद लीजिए व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पॉट स्कैन रात्रि 8:30 पर, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज एट 9 रात्रि 9:00। श्रोताओं, ये तो थे आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारियां। आइए अब आपको कल यानी 11 अगस्त 2026 को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। रोजाने की तरह कल दोपहर 2:00 आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अंग्रेजी में समाचार, तत्पश्चात हिंदी में समाचार 2:15 पर। भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना में सुनिए लामा दंगा और भिक्षु गणों से चंद बौद्ध भक्ति भजन कल दोपहर 2:30 पर। चंद आधुनिक आसामिया फिल्मी नगमों का आनंद लीजिए मायूक हजारिका के आवाज में कल दोपहर 3:00 कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत। कल दोपहर 3:30 पर कार्यक्रम मेरी बात में सुनिए दोर्जी खांडू राजकीय महाविद्यालय तवांग के तीसरी सत्र की छात्रिका कुमारी संग यूटन से वृक्षारोपण के महत्व विषय पर एक वार्ता। महिलाओं पर आधारित गीतों का कार्यक्रम नारी संगीत में आनंद लीजिए एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा फिल्म से दर्शन रावल और रोचक कोहली, आई हेट लव स्टोरी फिल्म से श्रेया घोषाल और सोना महापात्रा,

सिंह इज किंग फिल्म से राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल और कश्मीर की कली फिल्म से मोहम्मद रफी के आवाजों में चंद हिंदी फिल्मी नगमे कल दोपहर तीन बजकर पचास मिनट पर फिल्म जगत के नवगीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी में सुनिए ऊंचाई फिल्म से नकाश अजीज, ब्रह्मास्त्र फिल्म से तुषार जोशी और श्रेया घोषाल, रॉकस्टार फिल्म से मोहित चौहान, राबता फिल्म से अरिजीत सिंह, बरेली की बर्फी फिल्म से अर्को, सनम रे फिल्म से अरमान मलिक, पलक मुंचल और अमाल मलिक, रईस फिल्म से अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर, गोलमाल अगेन फिल्म से नीरज श्रीधर और सुकृति कक्कर और जब हैरी मेट सेजल फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाजों में चंद हिंदी फिल्मी नगमे। शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम राग रंग में आनंद लीजिए अनंत लाल और साथियों से शहनाई वादन कल शाम 4:30 पर। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार शाम 4:45 पर तथा अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। रोजाने की तरह मोनपा कार्यक्रम नमथर लेरिम में सुनिए श्री लामा खांडू जी से ग्याजा कोंगजो और बेल्जा सुजुन उपन्यास का चौथा भाग कल शाम 5:00 5:30 पर दैनिक मुख्य सूचना मोनपा में। कल शाम 5:35 पर साप्ताहिक मोनपा कार्यक्रम दंगपोक समा में आनंद लीजिए मीपा तवांग के कलाकार थुतन समूह से चंद मोनपा लोकगीत। लेरिमसेडा शाम 6:10 पर कार्यक्रम जरोखा। बौद्ध भक्ति वंदना का कार्यक्रम जेदोन देरिम में सुनिए सिंगसुर मठ के आनी थुतन वांगमू और साथियों के आवाजों में चंद बौद्ध भक्ति भजन कल शाम 6:20 पर। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार शाम 7:00 तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। कल शाम 7:10 पर कार्यक्रम आज की कविता में सुनिए एलडी स्कॉलर्स होम विद्यालय तवांग के छठी कक्षा की छात्रिका कुमारी तंजन यांकी से एक हिंदी कविता। फिल्म संगीत का साप्ताहिक कार्यक्रम एक ही फिल्म से के अंतर्गत आनंद लीजिए हां मैंने भी प्यार किया फिल्म के चंद नगमे कल शाम 7:11 पर। कल शाम 7:25 पर सुनिए कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोग। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार शाम 7:45 पर तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। कल शाम 7:55 पर देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम कौमीय तराने में सुनिए केसरी फिल्म का एक देशभक्ति नगमा। रात्रि 8:00 सुनिए व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन रात्रि 8:30 पर तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर और न्यूज एट 9 रात्रि 9:00। तो श्रोताओं ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां। इसके साथ ही कार्यक्रम जरोखा अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओं हमारा अगला कार्यक्रम सुनिएगा मोनपा में। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

Kunjurinjin,

0: 一个被老师被亲近的眼光和我就轻轻的阿不住话也听在我大家上面的去做些教授的工作人去送到你去不公阿伟一个被老师被亲近的眼光和等你去我听在我大家一见老别上面的去做些教授的看着去就做那你
1: 来年时代的龙庆港大王农民的前段里面大王官博那么突然之间下斯里斯克斯多努那么却博却个三农博来年的话龙庆港大王弟兄的门博里面把那车长队的来年长把那么多次的送到来年的大学界那新的个世界的学界英籍的世界龙庆港第六个是三农是
2: Namaskar आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद आज लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह विधेयक पेश किया था। इस विधेयक के माध्यम से भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन किया गया है। संसद ने बैंक कार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने भी मंजूरी दे दी है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसका उद्देश्य वर्तमान बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि यह विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 में बनाया गया था, जब बैंकिंग प्रणाली पूरी तरह से कागजी थी। लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्त और प्रशासन तथा कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 बिना चर्चा के पारित हो गया। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य सलाहकार समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
3: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
2: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग की।
4: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र की सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है, जो नागरिकों को विकसित भारत के निर्माण के प्रयास में एकजुट करता है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस वर्ष वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के कारण यह अभियान हर देशभक्त के लिए भावुक बन गया है।

0: Bharat. Prime Minister Narendra Modi met the medalists of the Commonwealth Games 2026 at his residence in New Delhi yesterday. During the interaction, the medal winners shared their experiences from the Games with the Prime Minister. Mr. Modi congratulated athletes for bringing glory to the nation and expresses confidence in their future victories. The FIH Hockey Men's and Women's World Cup 2026 will feature a revamped competition structure with the traditional quarterfinal stage scrapped and the top two teams from each of the two crossover pools advancing directly to the semi-finals. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे अंग्रेजी में समाचार। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:10 हुए हैं। श्रोताओं प्रस्तुत है कृषि संबंधित साप्ताहिक कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण। कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण में आज आप सुनेंगे गोमकांग गांव के एक पूर्व सैनिक एवं प्रगतिशील किसान श्री त्सरिंग तोकेल से उनके अनुभवों के विषय पर हुई भेंट वार्ता। उनसे भेंट करता है दोर्जी ड्रेमा।
2: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी तवांग से प्रसारित कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण में। श्रोताओं, आज हमें आपको ये बताने में बेहद खुशी हो रही है क्योंकि हमारे साथ आज जो मेहमान है बहुत ही खास है। जी हाँ श्रोताओं, हमारे साथ है आकाशवाणी तवांग का एक बहुत ही पुराना टॉकर। आपने सुना होगा इनके बारे में और इन्होंने हमारे आकाशवाणी तवांग से प्रसारित कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण में बहुत सारे वार्ता दिए हैं। श्रोताओं, हमारे साथ है गोमकांग बस्ती के एक प्रोग्रेसिव फार्मर श्री त्सरिंग तोकेल जी। तो त्सरिंग तोकेल जी, आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में और हमारे आकाशवाणी तवांग में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है।
3: बहुत बहुत मेहरबानी, आपने हमें तवांग में बुलाया। भरों को प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार।
2: जी श्रोताओं, आपको त्सरिंग तोकेल जी के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये एक भूतपूर्व सैनिक है। इन्होंने SSF यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में सेवा दिए हैं और नौकरी से रिटायरमेंट के बाद इन्होंने बहुत ही बड़ा काम शुरू किया है, जैसे कृषि क्षेत्र में, बागवानी क्षेत्र में और बागवानी क्षेत्र के अंतर्गत फ्लोरिकल्चर यानी फ्लावर फार्मिंग में। और सबसे बड़ी इनके जो बात है, इन्होंने जड़ी बूटी की दवाइयां बनाने शुरू की है। त्सरिंग तोकेल जी, आप हमें बताइए कि आपने ये सब काम करने के लिए क्यों सोचा जो आपने इस समय कर रहे हैं, कृषि क्षेत्र में, बागवानी क्षेत्र में और विशेषकर जड़ी बूटी की दवाइयां बनाने में? क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को देखा है जब उनके सर्विस से रिटायरमेंट होते हैं तो वो घर पर आराम करते हैं।
3: मैं जब फोर्स में था तो मैं एक नर्सिंग के तौर पर था
2: जी।
3: नर्सिंग करके दवाई के बारे में काफी जानकारी है। नर्सिंग होने के बाद तो काफी फोर्स में सिखाया जाता है
2: जी।
3: तो उसके बाद हमने 1974 में हिज होलीनेस का डॉक्टर तेंजिन छोटाला, आप से गुजर चुका है, 4-5 साल हो गया, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप ये फार्मेसी का दवाई तो आप जानते हैं, कुछ ना जानते हैं, ये अपना टिबेटन वाला आयुर्वेदिक दवाई पर भी ध्यान दीजिए, मैं आपको एक किताब देता हूँ, बोल के उन्होंने मेरे को एक किताब दिया। तो मैंने इस आयुर्वेदिक का जो टिबेटन का जो दवाई है इसके विषय में 1974 से जब भी हमको समय, जैसा समय मिला, मैं अपना सारा समय उस पर ध्यान दिया। उस पर हमने दिन रात मेहनत किया, कभी हम 1 बजे तक बैठ करके हम इसको पढ़े लिखे किया, तो इसके वजह से हम आज आयुर्वेदिक पर छोटा सा मतलब काम कर सकते हैं और इसलिए ये कर रहा हूँ
2: जी। हम ये जानना चाहते हैं कि आप जब जड़ी बूटी की दवाइयाँ बनाते हैं तो आपको बहुत सारे हर्ब्स की आवश्यकता पड़ती होगी, तो जो हर्ब्स आपको जरूरत पड़ती है वो आप कहाँ से लेते हैं?
3: अब मैं रिटायर होकर 30 साल हो गया, तो जब से रिटायर तब से, उससे पहले मैं इस काम को, नर्सरी के काम को कर रहा था। उसके बाद हमने दवाई के बारे में, तो अभी हम जब भी जैसे सितंबर अक्टूबर में मौसम खुल जाता है तो उस वक्त हम दवाई ढूंढने जाते हैं और जहां से भी हमें काफी, अभी घर में काफी दवाई लगा हुआ है। मेरे घर पर जमीन करीबन 5-6 एकड़ जमीन है, उसमें सारा दवाई और ये फ्रूट वेजिटेबल लगा हुआ है। तो दवाई तो हमने जहां से मिला, जो जो मिला, अब घर में लगा हूं उसको, अभी वही दवाई जो है घर में यूज के लिए भी काम आ रहा है। और कुछ दवाई जो है हम सितंबर अक्टूबर में पहाड़ों पर हम 2-3 आदमी ग्रुप बना के जाते हैं, वहां से ढूंढ के लेके आते हैं, तो फिर वहां से ढूंढ के लेके आने के बाद उस दवाई को सुखाते हैं, सुखाने के बाद हम उसको दवाई बनाते हैं
2: जी। जी बहुत अच्छी बात है। त्सरिंग तोकेल जी, आप हमें बताइए कि आप दवाइयां तो बनाते हैं लेकिन कौन सी समस्या के लिए आप बनाते हैं?
3: अच्छा, अभी दवाई तो बहुत किस्म का दवाई है, तो एक तो मैं आपको ये टैक्सिस बगटा, हमारे मुंबई में बोलते हैं उसको तेशंग, और ये टैक्सिस बगटा जो है एक बहुत उपयोग है और ये किस किस बीमार में काम आता है, तो मैं आपको इसके विषय में जानकारी

0: जाना चाहता हूँ।
1: ये
0: सबसे नंबर वन है इसका सिर दर्द, दूसरा है माइग्रेन, तीसरा है चक्कर आना, और चौथा है उसका अस्थमा का, जो है उसका लंग्स में कोई भी तकलीफ होने से, हार्ट केस मतलब हृदय का बीमारी, हृदय की बीमारी। ये टैक्सेस इतना अच्छा काम करता है। अब मैंने कई पेशेंट देखा जी, यहाँ से गुवाहाटी गया, यहाँ से दिल्ली गया, वापस आया, ठीक नहीं हो रहा, तो किसी ने बताया होगा यहाँ एक आयुर्वेदिक क्लब है, जाओ वहाँ जाके भी दिखाओ। तो मैंने दो तीन आदमी को जो गुवाहाटी किया, दिल्ली किया, वो ठीक नहीं हुआ, और मेरे यहाँ दवाई खा के ठीक हुआ। ये टैक्सेस पकड़ा हुआ ना, एक एंटी कैंसर का दवाई है। तो अब इसे ये अनुमान लगा सकता है कि एंटी जब कैंसर को ठीक करता है, तो छोटे मोटे बीमार उसके लिए क्या है। तो ये जैसा आपके डायबिटीज है, बार बार अपेक्षा आ रहा है, ये भी हमने कई लोगों को ठीक किया। और एक स्कूल का, जवाहरलाल नेहरू का स्कूल का एक लड़की आया था, 15 साल का था, वो भी मतलब कई सालों से बीमार था। तो स्कूल में वहाँ हंगामे मच गया कि जब एक रूम के अंदर हम 4-5 लड़की स्वस्थ होते हैं, बेचारी वो सो जाता, नींद आ जाता तो पेशाब कर देता, तो सारा रूम जो है गंदगी हो जाता। तो वहाँ कोई इसे, तो किसी ने बताया कि उसको मेरे पास लेके जाओ, तो मेरे पास आया। अब 2 महीना में उसका बिल्कुल ठीक हो गया। आज 2-3 साल हो गया बिल्कुल। अभी भी मैं उस लड़की को पूछ रहा हूँ कि तुमको अभी कोई तकलीफ, मेरे को हाथ जोड़ता है, मेरा पाँव पकड़ता है, आपने बहुत अच्छा किया, मैं ठीक ठाक हूँ बोल के बता रहा है। हाइपरटेंशन मतलब है बीपी हाई बोलता है उसको, टिपी टिपी बोलता है, ठक्से ठक्से मतलब बीपी, मतलब लोग बीपी का मतलब क्या जानते हैं आप थोड़ा भी जान लीजिए। बीपी मतलब, बीपी हाई मतलब हमारा शरीर का खून ज्यादा है नहीं है, वो नहीं है
1: जी, जी,
0: तो बीपी का मतलब उसमें शरीर में कुछ बीमारी है। तो ये बीपी हाई होने का 3 कारण है, मेन 3 कारण है। एक तो आपको सिर दर्द देगा
1: बिल्कुल,
0: और दूसरा आपको हार्ट में तकलीफ होने से, तीसरा आपके किडनी में तकलीफ होने से, इन तीनों में कहीं इन्फ्लेमेशन है, तो आपका बीपी हाई जाता है। जब मेरे पास पेशेंट आता है बीपी हाई का, तो 230 तक आया मेरे पास। उनको हमने फिर चेक किया, चेक करके क्या तकलीफ है, तो हम उससे पूछते हैं, फिर हमने चेक भी करता है। तो जैसा बीपी हाई होने का, आपको सिर का तकलीफ है, सिर का ट्रीटमेंट देना है। अब उसका बीपी सिर का किडनी का है, हम सिर का ट्रीटमेंट करने से ठीक नहीं होगा, तो उसका अगर हार्ट के कारण से बीपी हाई जा रहा है, तो फिर हार्ट का पेशेंट, हार्ट का ट्रीटमेंट उसको देना बहुत ही है। अब जैसे किडनी का है, किडनी के कारण से उसका बीपी हाई जा रहा है, हम उसको सिर का दवाई देगा तो ठीक नहीं होगा। ये सब हमने बहुत एक्सपीरियंस किया, बहुत हमने किताब पढ़ा, उसके बाद किताब से निकला, तो ये साबित हुआ कि जैसा बीमार आता है, हाई होने का, बीपी हाई होने का कारण सबसे फाइंड आउट काउस एंड टेट बोलता है, जो उसका किस कारण से हुआ और कौन सा बीमार है, उस बीमार को देके देना है। तो मैंने अभी बोला ना, आपका किडनी की तकलीफ है, सिर का ट्रीटमेंट करने से वो बीपी डाउन नहीं होगा, तो ये 3 जो है आपका बहुत ये है। तो अभी बीपी जो हाई होता है, तो आपने इसको बचा भी साथ साथ करना है, जैसे आपको नमक खाना, कोई भी मतलब मीठ खाना, कोई तेल भी नहीं खाना, ये सब आप अवॉइड करना है, इसको आप बचाव करना है, तो भी आपका बीपी ठीक हो सकता है। और इसके बारे में मेरे पास में कई लोग आया, कई लोग बीमार हुआ, तो ये भी खुशी की बात है। जैसे जैसा बीमार आता है, वैसा वैसा हम भी ट्रीटमेंट देते हैं, तो कई लोग ठीक हुआ।
1: जी जी, बिल्कुल सही बात है तपकिल जी, क्योंकि हम किसी से जब इलाज करवाते हैं, तो उनके दिए हुए इंस्ट्रक्शंस का भी तो पालन करना बहुत जरूरी होता है,
0: बहुत जरूरी,
1: तभी जाकर हमें एक अच्छी परिणाम मिल सकते हैं, है ना। और मैं तो ये कहना चाहूंगी कि आप पहले तो फौज के रूप में लोगों को सेवा दिए हैं, अभी रिटायरमेंट के बाद भी आपने अपने अंदर के नॉलेज को भरपूर उपयोग करते हुए लोगों को इतनी सेवा दे रहे हैं, और आपने अपने दम पर, अपने इंटरेस्ट पर सीखे हुए बहुत ज्यादा नॉलेज है। और तपकिल जी, तो चलिए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल आपके खेत में क्या क्या कार्य हो रहे हैं।
0: कृषि में हम 2 दिन दोनों काम करते हैं, क्योंकि दोनों ये स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। जैसा फ्रूट है, खाना बहुत जरूरी है शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, और जैसा सब्जी है, सब्जी फ्रेश करना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। तो आपको पता ही, जैसा सब्जी जो हम लोग विंटर में सब नीचे से लेते हैं, नीचे का जो सब्जी में आप हर दिन देखते हैं कि कई बीमार लग जाता है, गर्मी है उसमें केमिकल स्प्रे करता है, और कोई इंजेक्शन भी लगाता है, एक छोटा सा लौकी को बहुत बड़ा बना देता है। तो ऐसे भी केस हमने देखा है।
2: आपने कृषि क्षेत्र में ऑर्गेनिक को लेकर आप ध्यान दे रहे हैं, तो मैं जानना चाहूंगी बागवानी क्षेत्र में भी आप बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हैं, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, उसके बारे में आप क्या बताएंगे।
0: मेरे पास कई फ्रूट्स है, जैसे वॉलनट है, 30-40 वॉलनट पेड़ है, तो करीबन सबसे अच्छा फ्रूट स्टॉल लगा है। तो आप लोग अगर कोई किसी को समय मिले, आप आके देखिए कि वॉलनट कैसा फ्रूटिंग है, कैसा लगा है, क्योंकि इसको देखने से फिर

0: मैं एक उम्मीद करता हूँ कि आपके आगे जाकर के ये वन नोट का काम जो फ्रूट का काम जो करना शुरू करेगा। तो ये हमारे जैसे एप्पल है, एप्पल तो दवाओं में इतना सक्सेस नहीं हो रहा, कारण क्या है, ये जून जुलाई अगस्त में बहुत ज्यादा बारिश होता है
1: जी।
0: तो उससे उसका कलर चेंज हो जाता है।
1: अच्छा।
0: तो अभी उसमें कोई कलर चेंज होने से क्या हो, फिर मार्केट में लेने से क्या ना, देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो फ्रूट वही है जो नीचे से आता है, फ्रूट वही है, मगर उसका शक्ल ठीक नहीं होने के कारण से फ्रूट यहाँ फिर उसका अच्छे से बिक्री नहीं हो रहा
1: जी,
0: और लोग सब बोल रहे हैं कि ज्यादा नहीं लगा। तो वालों लगाना बहुत जरूरी है। और जैसे पलम है, पलम अभी आपको जुलाई में पक जाएगा, ये पलम भी यहाँ होता है, खूब होता है। और ये स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी मैंने ये स्ट्रॉबेरी जो शिमला से लेकर आया था, और यहाँ भी आपका DRDO में स्ट्रॉबेरी का प्लांट्स आपको मिलेगा, कोई एक दो डीजे बोलने से वहाँ आपको मिलेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा बड़ा होता है। और तो मेरा अभी ग्रीन हाउस के अंदर है, स्टोर लगाया मैंने, बहुत अच्छा हुआ। आप लोग करने से भविष्य में आपका हेल्थ बढ़ेगा, आपको खून बढ़ेगा। यहाँ का जो फ्रूट है आप खाइए, यहाँ का फल जो आप खाइए, यहाँ का सब्जी जो आप बनाइए, वो सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है।
1: जी जी, आपने सही बताए हैं, हमने भी देखे यहाँ जो हम एप्पल लगाते हैं तो यहाँ के सेब बाहर से सुंदर नहीं दिखते हैं, तो इस तरह से हमारे यहाँ सेब की जो फार्मिंग है शायद उतनी सफलता नहीं होती है। तो अखिल जी, आप हमें बताइए कि आप जड़ी बूटी की दवाइयाँ भी बनाते हैं, कृषि क्षेत्र में भी आप काम करते हैं, बागवानी क्षेत्र में भी आप काम करते हैं, तो वे सब क्या आप अकेले करते हैं या गवर्नमेंट से कोई आपको सहायता मिलती है इस बारे में? क्योंकि ऐसा काम करने में बहुत सारे आवश्यकताएं पड़ते हैं, इक्विपमेंट्स का हो या कोई अन्य चीज को लेके।
0: ये हमें मतलब जो इक्विपमेंट मगर दवाई मंगला जो भी है, यहाँ अपना जो हॉर्टिकल्चर ऑफिसर और ये एग्रीकल्चर ऑफिस से मदद काफी देते हैं, ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं दिया, काफी देते हैं। और ये हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर ने हमें यहाँ के मतलब आज से 5-4 साल पहले कई टूर में भी गया था। मैं टूर कहाँ कहाँ पहुंचा इसके बारे में आपको थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ। मैं शिमला में 2 बार टूर पर पहुंचा, दिल्ली में 1 बार पहुंचा, गुवाहाटी में 2 बार पहुंचा, सिक्किम में पहुंचा। तो इतना टूर हमने इधर उधर जाकर टूर लगाया, देखा, ये देखने का कारण क्या हुआ, मेरे एक दिल में एक मतलब हिम्मत बढ़ जाता है कि हम भी इस काम को क्यों नहीं कर सकता है।
1: बिल्कुल।
0: तो गवर्नमेंट में भी हमें जो भेजा है तो इसको देख करके वहां जाकर देख करके हाँ वहाँ इतना प्रोग्रेस है, तो दिल में ये बैठेगा सोच के हमको वहां भेजा है ना, क्योंकि भेजने का कारण हमको वहां भेजा है, तो कुछ देख के आएगा तो हम भविष्य में हमारा दबंग भी अच्छा बन जाएगा सोच के। तो मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा कि जो टूर में भेजा, टूर को देख के आया किस जगह में क्या क्या है, क्या क्या उगता है, क्या क्या लगाना है, वो देख के मेरे को बहुत खुश हुआ। और आज हमने जो मेरे बगीचा में कुछ थोड़ा सा किया है वो सब उनको देख उनसे प्रेरणा मिला, तो बहुत ही अच्छा लगा मेरे, आगे भी मैं इसको करते जाऊंगा। और आयुर्वेदिक का दवाई तो हम कर ही रहा हूँ, फ्रूट का भी हम अभी करते रहता हूँ, फूलों का भी करते रहता हूँ।
1: तो अखिल जी देखिए, हमारे तवांग जो है प्राकृतिक रूप से बहुत ही खूबसूरत है, और ऊपर से हमारे यहाँ के लोगों में ऐसा एक शौक है जो अपने घरों पर फूल लगाते हैं किस्म किस्म के। तो आपने बताया आप फ्लोरिकल्चर करते हैं, आप फूल के फार्मिंग भी करते हैं, तो आपके पास क्या क्या किस्म के फूल है और लोग खरीदने के लिए आते हैं?
0: मेरे विचार में तो मेडिसिन से ज्यादा मेरे को कमी किससे फूल से हो रहा है, क्योंकि अभी तवांग डिस्ट्रिक्ट में फूलों का बहुत ही सबको अच्छा लग गया, बहुत ये सब अच्छा लगना। जैसा जी आज से 20-25 साल पहले बेगोनिया बोल के एक फूल था, बहुत ही अच्छा मंदिर था उस वक्त, तो वह बेगोनिया तवांग में फर्स्ट मैंने कहा सिक्किम से लेकर लेकर के तवांग में फैलाया। अभी उसके बाद जैसे जैसा समय बीतता है, जैसा साल जाता है, तो अभी एजेलिया है, कई एजेलिया का कलर है।
1: अच्छा।
0: तो वो भी हम वहाँ अपना प्लान बनाता हूँ, और मेरा घर में काम करने वाला तो कोई नहीं है, हर दिन गांव वाला का लेबर लगाता हूँ, तो इससे भी एक पैदा है गांव वाला का, जिसका काम नहीं है कोई माता पिता बेटा लोग, तो हम उनको काम में बुलाने से वो आ जाता है, तो उनको भी हम हमारे वहां से कुछ पेमेंट मिलता है ना, वो पेमेंट उनको भी फायदा है। तो मेरे पास अभी तो एजेलिया का फूल काफी है, और अभी भी 5-6 साल हुआ हेजेंडिया, वो बहुत बड़ा एक फूल चलता है, उसको हेजेंडिया बोलता है उसको, वो भी हम वहाँ प्लांट बनाता है। तो प्लांट हाँ ऑर्किड भी है, ऑर्किड मेरे ऑर्किड मैंने अपना यहाँ पेक साहब को भी देखा था, मैंने फोटो खींचा हुआ तो मेरे से लंबा ऑर्किड है, तो आप अजब लगेगा ना ये देखने से। तो ऑर्किड भी यहाँ बहुत अच्छा सा हो रहा है, ऑर्किड के खेलने का समय है आपको जनवरी फरवरी मार्च तक बैठेगा, ग्रीन हाउस के अंदर रहने से जनवरी दिसंबर लास्ट में भी खेल जाता है। अब बाहर तो जैसे तवांग में बाहर रखिएगा तो आपको ऑर्किड सक्सेस नहीं है, वो आपको ये अगर तवांग में रखना है तो बिल्कुल ग्रीन हाउस के अंदर ही रखिए। और उसके बाद हाइजेनिया, हाइजेनिया बहुत एक सिंपल है, जो एजेलिया थोड़ा देर लगता है, हाइजेनिया तो बहुत जल्दी उग जाता है। अब 305 हॉस्पिटल जो है दिल्ली में जो हॉस्पिटल है अभी नया नया हॉस्पिटल खुला

0: ना तो मैंने वहां भी उन सब लोगों को उनका वहां बहुत मदद किया तो उन लोग भी बहुत खुश हुआ। तो एक मेरा फर्ज बनता अब मैंने उनको बोला कि आप तवांग में सिविल वालों को इतना ट्रीटमेंट दे रहा है और हम आपको छोटा सा इतना तो मदद जरूर कर सकता है और आप जितना चाहिए मेरे से ले लो बोला। तो बहुत खुश हुआ सर और मैंने वहां काफी फूल सप्लाई किया। ट्रेडिशनल भी किसको देखता है फूल को देखता है। तो ये जो आप 100% यकीन है आप कर रहे हैं फूल को लगा रहे और भी आगे बढ़े जो नीचे से टूरिज्म आ रहा है वो लोग तवांग के फूल को देख करके खुश होकर यहाँ से चला जाएगा। तो और वहां जाके घर में सबको कहानी सुनाएगा हाँ तवांग प्लेस जो है वहाँ इतना फूल हो रहा है वहाँ इतना अच्छा किस्म का फूल है बोल के सबको कहानी सुनाएगा।
1: जी क्योंकि साथ साथ आप इस तरह के काम करते हैं तो आपके शरीर की कसरत तो होती है साथ में आप अच्छे इनकम भी कमा लेते हैं ना जी। तो सिरिंग दबकेल जी और हमें आपसे एक बात जाननी है आप बता रहे थे कि आप लोकल इंसेंस पोइटंग बनाने के भी काम करते हैं तो इस बारे में आप बताइए हमारे श्रोताओं को।
0: मैं अगरबत्ती को बहुत सालों से बना रहा हूँ तो वहाँ क्लब सेंटर में एक गवर्नमेंट का एक हॉट है उसको रेंट में लेकर बनाया तो अभी हमने उसको शिफ्ट किया। मेरे घर में अभी

0: होते हैं, साथ में आप अच्छे इनकम भी कमा लेते हैं ना जी। तो सिरिंग दबकेल जी, और हमें आपसे एक बात जाननी है। आप बता रहे थे कि आप लोकल इंसेंस पोइटंग बनाने के भी काम करते हैं, तो इस बारे में आप बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: मैं अगरबत्ती को बहुत सालों से बना रहा हूँ, तो वहाँ क्लब सेंटर में एक गवर्नमेंट का एक हॉट है, उसको रेंट में लेकर बनाया, तो अभी हमने उसको शिफ्ट किया। मेरे घर में अभी वहाँ एक हॉट बना, हमने हॉट बना दिया, तैयार मशीन यहाँ से, सारा मशीन यहाँ से लेकर के अभी वहाँ घर में, क्योंकि यहाँ तवांग में रखने से क्या है, एक तो लेबर कम मिलता है और लेबर मिलता नहीं है, और घर भी दूर है, हर दिन यहाँ आकर हम काम नहीं कर सकते हैं, तो उसमें क्या गवर्नमेंट का हाउस रेंट भी लगता है, बिजली भी लगता है, पानी का भी लगता है, तो इससे हमको ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिला। तो और ये अगरबत्ती जो मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ, क्योंकि अगरबत्ती बाहर से आता है, कलिंगों से आता है, दार्जिलिंग से आता है, दिल्ली से आता है, कहाँ से, मैसूर से आता है, और ये अगरबत्ती बनाने के लिए यहाँ 100% यहाँ सबसे अच्छा उसका मसाला मगरा है, स्पाइस जो है।
0: क्या से बनाते हैं
1: ये? अभी इसका अलग अलग है, अच्छा अच्छा बनेगा तो इसे शुभकांग का है, फूलों का है, फलों का है, और सुगंध अच्छा बचा, ये सारे बाहर पे इसका है, वो शुभ शुभ का लिप्स के बनाते, तो ये हमने सोचा कि ये शुभ अगरबत्ती यहाँ अपना इतना चीज होते हुए हम लोग यहाँ क्यों नहीं बनाएगा, यहाँ अपना यहाँ बनना चाहिए। तो मैंने अभी मेरा अगरबत्ती शो है, मेरे घर में एक होट भी बन गया, मैचिंग सब सेटिंग हो गया, अभी सिर्फ तो इलेक्ट्रिक का कनेक्शन थोड़ा लेना बाकी है, बाद में आप लोग आइए, मैं वहाँ अगरबत्ती बनना है, अभी शुरू हो ही समझो आप, एक महीने के अंदर कम्प्लीट हो जाएगा, फिर अगरबत्ती भी आपको वहां से मिल जाएगा, क्योंकि अगरबत्ती शुद्ध है, बाहर से लेने का जरूरत नहीं है, कोशिश कीजिए आने की।
0: और आप बता रहे थे कि आपने जड़ी बूटी से फर्टिलिटी की दवाइयाँ भी बनाते हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप?
1: अच्छा अच्छा, दवाई के बारे में और एक दो आखिर में एक दो और जानकारी देना चाहता हूँ कि यहाँ दवाई बहुत अच्छा है, तो अभी इनफर्टिलिटी बोलते हैं उसमें एक बच्चा पैदा नहीं होता है, तो ऐसे केस भी काफी है। तो मैंने एक गुवाहाटी में मेरा एक बहुत बड़ा दोस्त है, वो भी मेडिसिन का मतलब सप्लाई करता है, तो उसका नाम है हुसैन, तो वहाँ भी उन्होंने बोला भी आप ऐसा दवाई बनाते हो, तो आप ऐसे बच्चा पैदा होने के लिए क्यों दवाई? मैंने बोला मैं दवाई बना रहा हूँ, मगर मैं इसको मैंने बहुत परिचय नहीं दिया, क्योंकि ये दवाई जो है बहुत कम है, और मेरे पास दवाई जो आता नहीं है, मिलता नहीं है, तो अब हम सबको बता देगा कि हम ये दवाई का बना, तो कई लोग आएगा तो हम उसको खाली बेचना अच्छा नहीं लगता, तो हमने सोचा कि ये कम कर दे। तो जैसे कि मैंने 6 आदमी का ट्रीटमेंट किया, 3 आदमी का बच्चा 100% हुआ, अब 3 का नहीं हुआ होगा, ये भी सच है, दवाई है। अभी मैं इस दवाई को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ, अभी मेरे पास काफी उपलब्ध दवाई मिल भी गया, अभी कुछ एक दो और जरूरत है, जैसे अजगुम्बू मगरा है, कहीं कहीं किसी किसी को डिमांड भी दिया है, ये जब भी बन जाता है किसी को इसके बारे में तंग है, अब मेरे से वो आप मेरे से खुद मिलना पड़ेगा जो जो केस है। अभी इसमें 2 किस्म का, एक तो लड़का को तकलीफ होगा, दूसरा या लड़के को, किसको तकलीफ है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिसको तकलीफ है उसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ऐसा। और टेस्ट करने के लिए भी है, इसका सोमवार टेस्ट होता है, वो भी टेस्ट करने के लिए भी है, तो इसे अभी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब मेरे इसको सुना होगा, तो किसी को जरूरत पड़े तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट रखिए।
0: जी जी, हमारे भारत में मेडिकल साइंस बहुत एडवांस्ड है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत एक्सपेंसिव भी है। आपने जड़ी बूटी की इस तरह की दवाइयाँ बनाते हैं और लोगों को फायदा भी हो रहे हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है ना। तो श्रोताओं, आज हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में गोमकांग बस्ती के एक प्रोग्रेसिव फार्मर सिरिंग दबकेल जी आए, और इनके रिटायरमेंट के बाद के जो इन्होंने काम शुरू किया है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, और जड़ी बूटी की दवाइयां बनाने में जानकारियां दी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी।
2: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे गोमकांग गांव के एक पूर्व सैनिक एवं प्रगतिशील किसान श्री सिरिंग तोबगिल से उनके अनुभवों और कार्यों के विषय पर हुई भेंट वार्ता। उनसे भेंट करता थे दोर्जी ड्रेमा। इसके साथ ही कृषि संबंधित साप्ताहिक कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण अब समाप्त होता है।
3: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
4: अच्छे उपचार के लिए अब नहीं रहेगा कोई लाचार। देश भर में 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं अब 5 लाख के मुफ्त इलाज के हकदार। अब तक 1.25 लाख रुपए से अधिक मूल्य के मुफ्त उपचार के लाभ दिए जा चुके हैं, और स्वाभिमान और सेहत की सौगात का ये सिलसिला जारी है।
5: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4

0: 5555 पर कॉल करें।
1: आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब सुनिए वीर सैनिकों पर आधारित कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत।

कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का पहला नगमा सुनिए, एक रिश्ता फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में, बोल समीर के और संगीत नदीम श्रवण का।

अगला नगमा पेश है अनुराधा पोदवाल और कुमार सानू की आवाजों में। तुमसे मिलके रॉन्ग नंबर फिल्म के इस गीत को लिखा है प्रवीण भरद्वाज ने और संगीत से सवारा है डब्बू मलिक ने।

नाम गुम जाएगा फिल्म के इस गीत के साथ ही वीर सैनिकों पर आधारित कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:45 हो रहे हैं। श्रोताओं, अब से चंद पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रादेशिक समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। संसद ने बैंकर्स बुक एविडेंस बिल 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा में आज इस विधेयक को मंजूरी दी, जबकि लोकसभा में इसे पहले ही पारित कर दिया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक को सदन में पेश किया, जिसका उद्देश्य वर्तमान बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकताओं के अनुरूप बैंकर्स बुक से संबंधित साक्ष्य के कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाना है। ये विधेयक बुकर्स बैंक से संबंधित साक्ष्य के लिए कानूनी प्रावधान उपलब्ध कराने और मौजूदा डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप कानून को तैयार करने का प्रयास करता है। इसके तहत बैंकर्स बुक का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य रूप से स्वीकार्य, वैध और कानूनी रूप से लागू करना योग्य होगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज पूर्वोत्तर के विश्वविद्यालयों से पारंपरिक डिग्री केंद्रित शिक्षा से आगे बढ़कर ऐसे समस्या समाधान संस्थान के रूप में विकसित होने का आह्वान किया है जो क्षेत्र की विशिष्ट विकासात्मक, सामाजिक, पर्यावरणीय और रणनीतिक चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम हो। उन्होंने पासीघाट स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित पूर्वोत्तर विश्वविद्यालयों के लिए वाइस चांसलर्स को दो दिवसीय राउंड टेबल के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर भारत में पहली बार आयोजित इस चांसलर्स राउंड टेबल केवल विचार विमर्श तक सीमित न रहते हुए बल्कि इसे परिणाम स्वरूप ठोस संगठन साझेदारी, क्रियान्वयन योग्य विचार के साथ ही योग्य परिणाम भी सामने आने चाहिए। ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन इनोवेशंस कोलैबोरेशंस एंड स्ट्रेटजीज फॉर फ्यूचर रेडी इंडिया विषय पर आयोजित इस राउंड टेबल में पूर्वोत्तर के विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर्स, शिक्षाविद, विशेषज्ञ तथा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज AIU और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पासीघाट में NCC अकादमी परिसर का भी उद्घाटन किया। ये पूर्वोत्तर में तेजपुर असम के बाद ऐसी दूसरी NCC अकादमी होगी। असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित मिंगमांग बस्ती में आज दोनों राज्यों के लोगों के बीच झड़प हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए। घायलों को पहले स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को बाद में डिब्रूगढ़ रेफर किया गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि स्थिति को नियंत्रण में लेते हुए मामलों के सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि दोनों राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की बातचीत के लिए भेजा गया है, जबकि असम के मुख्य सचिव और DGP स्थिति पर लगातार करीबी नजर रखे हुए हैं। सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग पासीघाट के प्रिंसिपल कर्नल अनंत थापन ने आज लोकभवन ईटानगर में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल KT पारनायक रिटायर्ड से मुलाकात की। कर्नल थापन ने राज्यपाल को संस्थान के शैक्षणिक प्रदर्शन, सह पाठ्यक्रम उपलब्धियों, बुनियादी ढांचे के विकास, भविष्य की योजनाओं तथा तेजी से बदलते शैक्षणिक माहौल में युवा कैडेट्स को तैयार करने के दौरान स्कूल के सामने आ रही चुनौतियों की जानकारी दी। राज्यपाल ने अनुशासित, जिम्मेदार और राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पित देशभक्त नागरिक तैयार करने में सैनिक स्कूल की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि सैनिक स्कूलों ने सशस्त्र बलों और सार्वजनिक सेवा के अन्य क्षेत्रों में नेतृत्व की भूमिका के लिए विद्यार्थियों को तैयार कर लगातार राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है और ऐसे संस्थानों में शारीरिक फिटनेस, अनुशासन, चरित्र निर्माण और शैक्षणिक उत्कृष्टता शिक्षा के मुख्य आधार बने रहने चाहिए। कर्नल थापर ने राज्यपाल को यह भी बताया है कि स्कूल को अधूरे बुनियादी ढांचे, बिजली की अनियमितता, कटौती और अत्यधिक बाढ़ के कारण स्कूल परिसर के एक हिस्से के कटाव जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधीन अरुणाचल प्रदेश जनगणना संचालय निदेशालय द्वारा आज तवांग के उपायुक्त कार्यालय कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला जनगणना पुस्तिका DCHP 2027 पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनगणना के उपनिदेशक फिरालीन फासा और जनगणना संचालन के जूनियर सलाहकार डेनियल जॉन्स ने क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया तथा उन्हें जिला जनगणना पुस्तिका 2027 की तैयारी के संबंधित विभिन्न पहलुओं से अवगत भी कराया। ये प्रशिक्षण जनगणना 2027 के लिए क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की तैयारी और क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य जिला स्तर से संबंधित महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय और सामाजिक आर्थिक जानकारी का विस्तृत एवं सटीक संकलन सुनिश्चित करना है। और अपर सियांग जिले में जिला हाईवे सेफ्टी टास्क फोर्स की पहली बैठक आज यिंकियोंग स्थित उपायुक्त कार्यालय कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर भारी वाणिज्यिक वाहनों की अत्याधुनिक पार्किंग रोकने के लिए समय समय पर निरीक्षण और गश्त संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया

0: बुलेटिन नमस्कार।
1: आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:55 हुए हैं। चलिए अब सुनते हैं कार्यक्रम देशभक्ति गीत के अंतर्गत बुश द प्राइड ऑफ इंडिया फिल्म का एक देशभक्ति नगमा।

ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8 बजे हैं। आइए अब आनंद लेते हैं व्हाट्सएप फरमाइश पर आधारित कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का। श्रोताओं, कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का पहला फरमाइश किया है पैगंग लहु से पेमा टाशी, तंजन सोमू, तंजन दावा, नाको, तंजन सोमू और तोंगचिन ने। आप सभी के फरमाइश पे पेश है फूल और अंगार फिल्म से कुमार सानू और सुजाता गोस्वामी का गाया गीत। रानी मलिक की लिखी इस गीत को संगीत से संवारा है अनु मलिक ने।

अगला फरमाइश प्राप्त हुआ है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा, मोरादाबाद दुलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तानवी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह से मेरे जीवन साथी फिल्म के नगमे का। इस नगमे को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, गाया किशोर कुमार ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित चंद सदाबहार पुराने नगमों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अगले फरमाइश की ओर। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवकर, निर्मला नवकर और विशाल नवकर। मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपन ताइडे और आशीष मुरेकर के फरमाइश पर सुनिए निकाह फिल्म से महेंद्र कपूर और सलमा आगा का गाया गीत। रवि द्वारा संगीत इस गीत को लिखा है हसन कमल ने।

अगला नगमा सुनिए कोपरगांव महाराष्ट्र से सुरेश मलोडे और वर्षा मलोडे, शिवगांव महाराष्ट्र से श्रीराम गोंदाली और उषा गोंदाली के फरमाइश पे प्रस्तुत है यादों की बारात फिल्म से आशा भोसले और मोहम्मद रफी का गाया गीत, बोल मजरू सुल्तानपुरी के और संगीत आरडी बर्मन का।

श्रोताओं, कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का अंतिम फरमाइश किया है गांधी चौक बारमेर राजस्थान से बबलेश पनवार, डैनी पनवार और मनीष पनवार, रामदेवरा राजस्थान से दिनेश चौहान, खलीफों की बावरी राजस्थान से खुदा बख्श खलीफा और आसाम से हितेंद्र दास ने। आप सभी के फरमाइश पे पेश है जाने मन फिल्म से मोहम्मद रफी और हेमलता का गाया गीत। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित चंद सदाबहार पुराने नगमे। यदि आप भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक जरूर व्हाट्सएप करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत और फिल्म का नाम अवश्य लिखें। इसके साथ ही आपकी फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8:30 हो रहे हैं। श्रोताओं, आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, तत्पश्चात समाचार संध्या तथा न्यूज़ एट 9। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: नेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री से अपने अनुभव साझा किए। भारत ने 3 पदकों के साथ किया वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप का समापन। मोहन बागान CISF को हराकर डूरंड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। बोधना शिवानंदन और श्रेयस रॉयल ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता। और FISU विश्वविद्यालय स्कॉश चैंपियनशिप में भारत ने 3 पदक जीते। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं राष्ट्रमंडल खेल विजेताओं से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग खेलों से जुड़ते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने देशवासियों से भारत के खिलाड़ियों का हमेशा उत्साह बढ़ाने की अपील की।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
0: मोदी ने कहा कि सम्मान केवल रिबन काटने से नहीं मिलता, बल्कि एक महत्वाकांक्षी खिलाड़ी के मन में जोश भरने से मिलता है। उन्होंने खिलाड़ियों को खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। भारोत्तोलक सैखोम मीराबाई चानू से बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी जीत आने वाले पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
2: इतने आंसू टपक रहे थे, मुझे लगता है कि आंसू के हर बूंद से जैसे गोल्ड मेडल टपक रहा।
3: मैं बहुत ज्यादा खुशी थी, इमोशनल भी थे उसी दिन, खुशी ज्यादा था और

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेता

0: है, तो ये चार साल के अंदर मैं कितना क्या क्या कुछ मैंने फेस किया था। हर टाइम इंजुरी ही चल रहे थे और फैमिली प्रॉब्लम वो सब हो रहा था, तो बहुत मुश्किल से मैं ये चार साल फेस किया था। तो वो सब जब पोडियम में जब मैं खड़ी थे सर, और हमारी जो फ्लैग ऊपर जाते हैं और हमारे नेशनल एंथम जब बजते हैं, तो सर हम रुक नहीं सकते सर, अपना आप आंसू निकलते हैं। वो
1: बहुत बहुत बढ़िया। आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है।
2: प्रधानमंत्री ने लवलीना बोरगोहेन की एकाग्रता की भी सराहना की।
1: क्या हुआ, वो रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा कर रही थी?
3: सर उस दिन हम लोगों का तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस था, लास्ट डे था, सब जीत के गए थे और पूरा इंडिया के लोग थे, तो थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा था। तो मैंने उनको अच्छे से बोला, रिक्वेस्ट किया था सर, फिर उन्होंने मान भी लिया, तो उन्होंने बोला कि हम चेंज भी करेंगे, अभी चेंज भी हो गया सर।
1: नहीं लेकिन ये इस विजय की परिस्थिति, एक खुशी आनंद अपने साथियों के साथ और गेम पूरे हो चुके हैं, तो हंसी मजाक मस्ती का मूड, ऐसे समय उस मैप पर नजर जाना और उसको रजिस्टर करना और तुरंत सिर्फ मेडल देते समय देश खड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं, भीतर से देश का भाव, मैं सच बताता हूँ, ये वीडियो सामान्य नहीं है, लंबे समय तक लोगों को याद रहे।
2: जादूमणि सिंह ने करगिल दिवस से जुड़े अपने अनुभव प्रधानमंत्री से साझा किए।
1: करगिल विजय दिवस पर किसकी विजय हुई थी?
4: उस दिन करगिल डे था, वैसे जिस दिन मैंने पाकिस्तान के साथ फाइट किया था सर, वो उस दिन का था। इंडियन आर्मी से हूँ तो मैंने उस दिन पहले से बहुत वो था कि सर पाकिस्तान को हराना है। मैंने वो काम पाकिस्तान एक तरफा मैंने 5-0 से हराया, हमारा इंडियन आर्मी का करगिल हीरोज को मैंने डेडिकेट किया था सर।
1: आपको ये याद रहना, और आप स्वयं फौज से हैं तो मैं जरूर मानता हूँ कि देश के वीर जवानों को आपने जो भाव प्रकट किया ना कि मैं करगिल के विजेताओं को मेरा मेडल समर्पित कर, उसने उस विजय पर 4 चांद लगा दिए, जिसको पराजित करना था उसी को किया।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लिए लगातार जीत हासिल करने में भारतीय खिलाड़ियों के समर्पित प्रयास और निरंतर सफलताएं विद्यार्थियों को प्रेरित करती हैं।
1: मेरे यहाँ मुझे यहाँ लगभग 12-13 साल हो गए इसी मकान में, अगर मैंने रेगुलरली और हर बार किसी को रिसीव किया है, किसी को मैं मिला हूँ, तो खिलाड़ी है। पिछले 10-12 सालों के आप लोगों के पुरुषार्थ के कारण, भारत को लगातार विजय दिलाने के आपके प्रयासों के कारण और उत्तरोत्तर सफलता में नई ऊंचाइयां पार करने की परंपरा के कारण, जो काम शायद हम स्कूलों में जाके कहें कि नहीं नहीं खेलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो काम स्कूलों में जाकर के हम कर सकते थे, उससे ज्यादा आपका मेडल उनको इंस्पायर करता है।
2: प्रधानमंत्री ने देश को गौरवान्वित करने के लिए पदक विजेताओं को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की।

0: और अब बात एथलेटिक्स पर। अमेरिका के यूजीन में वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत का अभियान 3 पदक के साथ समाप्त हुआ। नेशनल सीनियर रिकॉर्ड होल्डर पूजा सिंह महिलाओं की हाई जंप फाइनल में 7वें स्थान पर रही। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
1: उन्नीस वर्षीय पूजा इस साल की शुरुआत में 1.93 मीटर का नेशनल सीनियर रिकॉर्ड बनाने के बाद इस प्रतियोगिता में एक मजबूत दावेदार के तौर पर उतरी थी। हालांकि फाइनल में वो केवल 1.84 मीटर ही पार कर सकी। इसके बाद वो 1.87 मीटर की ऊंचाई पार करने की तीनों कोशिशों में नाकाम रही और प्रतियोगिता से बाहर हो गयी। ऑस्ट्रेलिया की इजोबेल लुइसन रो ने 1.92 मीटर की ऊंचाई पार करके स्वर्ण पदक जीता। हंगरी की लिलियाना बाटोरे ने रजत और स्पेन की इताना अलोंसो ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इस वर्ष पूजा ने मई में एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 1.93 मीटर का रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता था। वो सीनियर एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मौजूदा चैंपियन भी हैं। भारत की महिलाओं की 4x400 मीटर रिले टीम को चुनौतियों का सामना करना पड़ा और वो फाइनल में आखिरी स्थान पर रही। भारतीय टीम में भूमिका नेहते, तहुरा खातून, तनु चौधरी और थिया अरुमुगम शामिल थी। अमेरिका ने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण, ऑस्ट्रेलिया ने रजत और ग्रेट ब्रिटेन ने कांस्य पदक जीता। भारत ने चैंपियनशिप का समापन 2 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ किया, जो वर्ष 2021 और 2022 के संस्करणों में जीते गए कुल पदकों की संख्या के बराबर है। आशीष यादव ने पुरुषों की जेवलिन थ्रो स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतकर भारत को टूर्नामेंट का पहला पदक दिलाया था। वहीं बसंत कुमार मेघवाल ने पुरुषों की हाई जंप में एक और सिल्वर मेडल जोड़ा, जबकि शहनवाज खान ने पुरुषों की लॉन्ग जंप में कांस्य पदक हासिल किया। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन।
0: चलते हैं हॉकी के मैदान की ओर। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित की जाएगी। विश्व कप से पहले इसकी संरचना में बदलाव किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: हॉकी विश्व कप के पारंपरिक क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है। दोनों क्रॉसओवर पूलों से शीर्ष दो टीमें सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। नए प्रारूप के कारण टीमों के पास शुरुआत से ही गलतियों की गुंजाइश कम होगी, क्योंकि पहले पूल चरण के परिणाम अगले चरण में भी लागू हो सकते हैं। भारत की पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगी। टूर्नामेंट की शुरुआत में प्रत्येक प्रतियोगिता की 16 टीमों को 4-4 टीमों के 4 पूलों में बांटा जाएगा। 15 से 20 अगस्त तक प्रत्येक टीम अपने पूल की अन्य टीमों के खिलाफ 3 मैच खेलेंगी और अंतिम रैंकिंग के आधार पर अगले चरण की टीमों का निर्धारण होगा। पूल ए और डी की शीर्ष दो टीमें पूल ई में प्रवेश करेंगी, जबकि पूल बी और सी की शीर्ष दो टीमें पूल एफ में खेलेंगी। पूल ई और पूल एफ से शीर्ष दो टीम सीधे अंतिम 4 में पहुंचेंगी। प्रतियोगिता के महिला वर्ग का समापन 29 अगस्त को, वहीं पुरुष वर्ग का अंतिम मुकाबला 30 अगस्त को खेला जाएगा। अर्जुन शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब बात स्क्वैश पर। मुंबई में खेले गए FISU विश्व विश्वविद्यालय स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत ने 3 पदक जीते। व्यक्तिगत पुरुष वर्ग में पहली बार भारत ने स्वर्ण, मिक्स टीम चैंपियनशिप में रजत और व्यक्तिगत पुरुष वर्ग में कांस्य पदक जीते। सुनते हैं मुंबई से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
3: India secured 3 medals at the 2026 FISU World University Championship squash, with Surat Kumar Chand winning the men's singles gold, India earning silver in the mixed team event, and Om Samwal sharing the men's singles bronze. India's Suraj Kumar Chand, the student of Somaiya Vidyavihar University, won the men's singles gold medal after defeating Hungary's Benedek in a thrilling 5-game final. Suraj thus became the first Indian ever to win the men's singles title at the FISU World University Championship squash in 16 years. Suraj is also part of the Indian squash squad for the upcoming Asian Games. India's Om Samwal and Francis Joshua shared the men's singles bronze medals after reaching the semi-finals, adding another podium finish to the men's singles event. India followed its strong showing in the singles events with a place in the team event final after overcoming Spain 3-1 in the semi-final. The final against Hong Kong China was closely contested, with both teams winning 2 rounds each. With the score tied at 2-2,

0: the team event title was decided by game difference. Hong Kong-China finished with 8 games won to India's 6, securing the gold medal while pipping India to the silver medal position. For SportsCan, this is S. Kishore from Mumbai.
1: स्वर्ण पदक विजेता सूरज कुमार चांद ने जीत के बाद अपने अनुभव साझा किए।
2: रियली हैप्पी आफ्टर विनिंग दिस टूर्नामेंट एंड बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विन दिस। काफी अच्छा लगा मुझे ये टूर्नामेंट खेल के। लास्ट टाइम हमें ब्रॉन्ज मिला था टीम इवेंट में और मुझे पर्सनली ब्रॉन्ज मिला था इंडिविजुअल्स में, तो इस बार गोल्ड जीत के और सिल्वर जीत के काफी अच्छा लग रहा है एंड मैं काफी हैप्पी हूँ अपने रिजल्ट से।
1: चलते हैं फुटबॉल के मैदान की ओर। डूरंड कप फुटबॉल में मोहन बागान सुपर जायंट्स ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए आज सीआईएसएफ प्रोटेक्टर्स को 6-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। सुनते हैं नेहा की ये रिपोर्ट।
3: बागान ने प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इस जीत के नायक साहिल अब्दुल समद रहे, जिन्होंने पहले हाफ में ही हैट्रिक जमाई। उन्होंने 17वें, 19वें और 37वें मिनट में गोल किए। उनके अलावा मनवीर सिंह ने 24वें, जेमी मैकलारेन ने 68वें और टेकचाम अभिषेक सिंह ने 73वें मिनट में गोल दागे। इससे पहले कल हुए ग्रुप डी के अपने आखिरी मैच में TRAUFC ने इंडियन नेवी को 2-1 से हराया। इस मैच में अफरीदी बुयामायूम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल किए। बुयामायूम ने 16वें मिनट में एक शानदार कर्लिंग शॉट के साथ खाता खोला, लेकिन खेल फिर से शुरू होने के ठीक 16 सेकंड बाद खुल्ला कपम जहीर खान ने गोल कर मुकाबले को बराबर कर दिया। इसके बाद बुयामायूम ने 60वें मिनट में TRAU को फिर से बढ़त दिलाई और अपनी बढ़त बनाए रखी। इंडियन नेवी ने गेंद पर ज्यादा कब्जा रखा और 26 बार गोल करने की कोशिश की, जिसमें से 15 शॉट टारगेट पर थे, लेकिन TRAU के डिफेंस और गोलकीपर ताजुद्दीन ने उन्हें बार बार रोका। वहीं TRAU ने सिर्फ 8 शॉट लिए और 2 गोल भी दागे। इस नतीजे के साथ TRAU 3 मुकाबले में 4 अंकों के साथ ग्रुप डी में दूसरे स्थान पर रही, जबकि इंडियन नेवी ने 3 अंकों के साथ अपना अभियान समाप्त किया। कोई भी टीम क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंच सकी। पहली बार खेल रही FC रेंगदाई ग्रुप में शीर्ष पर रही और अंतिम 8 में जगह बनाई। इंडियन नेवी के लगातार अटैक के बावजूद वे बराबरी का दूसरा गोल नहीं कर सके और TRAU ने कड़े मुकाबले के बाद जीत हासिल की। इस जीत के साथ TRAU का डूरंड कप अभियान समाप्त हुआ। लंबे समय तक सेलर्स के दबदबे वाले इस मैच में बुयामायूम की फिनिशिंग और ताजुद्दीन की गोलकीपिंग ने आखिरकार निर्णायक भूमिका निभाई। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्सकैन।
1: बात शतरंज पर। भारतीय मूल के 2 खिलाड़ियों ने ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप 2026 में इतिहास रच दिया है। 11 वर्षीय बोधना शिवानंदन और 17 वर्षीय श्रेयस रॉयल ने कल ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता। बोधना ब्रिटेन की अब तक की सबसे कम उम्र की महिला शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीतकर महिला सिंगल्स में उन्होंने जगह बनाई थी। उन्हें उधर फाइनल में उन्होंने आयरलैंड की 14 वर्षीय त्रिशा कनेमाराला को रोमांचक रैपिड प्लेऑफ में हराया। वहीं दक्षिण पूर्व लंदन के श्रेयस रॉयल ने 9 दौर के बाद सबसे ज्यादा अंक हासिल कर ओपन ब्रिटिश खिताब अपने नाम किया। उन्होंने इंग्लैंड के अनुभवी ग्रैंड मास्टर्स को आधे अंक से पीछे छोड़ा। ये उनका पहला ब्रिटिश खिताब भी है। और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। खेल जगत की हर खबर के साथ आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्सकैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्सकैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आश्वासन दिया, UPI लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं।

0: डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद चलने की देने की अपील की। कहा, गृहमंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों तथा पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहली बार गायन। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। एफआईएच हॉकी विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। क्वार्टर फाइनल मुकाबले नहीं होंगे। पुरुष और महिला टीम पूल डी में शामिल। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद आज लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेनदेन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंककार बहिस्साक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि यह विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा।
1: The bill, among various other things that it wants to do.
2: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
1: परमिट्स ऑथेंटिकेशन थ्रू मैनुअल, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स।
0: लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है।
3: इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन करना भी है।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही 3-3 बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में आज 4 विधेयक पेश किए गए। इनमें से अधिकरण सुधार विधेयक 2026 विपक्ष के शोर शराबे के बीच बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। वहीं राज्यसभा में 2 विधेयक चर्चा के लिए लिया गया, जिनमें बैंकिंग प्रणाली को आधुनिक और आज के डिजिटल युग के अनुरूप बनाने के लिए बैंककार बहिस्साक्ष्य विधेयक 2026 पारित किया गया। इसके अलावा कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा के बाद इसे लोकसभा को लौटा दिया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद

0: संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृहमंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
1: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
0: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृहमंत्री के वक्तव्य की मांग की।
2: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
0: भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने और चर्चा में अपने विषय बदलने का आरोप लगाया है। पार्टी के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि श्री गांधी का उद्देश्य चर्चा न करना और अराजकता फैलाना है।
3: फिर से मैं चैलेंज देता हूं राहुल गांधी को, आप सदन में आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, यह भी बताना चाहूंगा। और भ्रम मत फैलाइए, कोई गोली नहीं चली है जंतर मंतर में और कोई गोली का ऑर्डर नहीं दिया गया है जंतर मंतर में।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खिंगांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
4: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में हजारों अभ्यर्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च किया और कई बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस के अनुसार प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की और पुलिस कर्मियों पर पथराव भी किया, जिसके बाद बल का प्रयोग किया गया। रांची सिटी एसपी पारस राणा और एसपी ग्रामीण गौरव गोस्वामी ने छात्रों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील करते हुए कहा कि पुलिस ने संयम बरता है। प्रदर्शनकारी जेएसएससी सीजी परीक्षा की स्वतंत्र सीबीआई जांच और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सीबीआई और ईडी जांच की मांग दोहराई है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: इस वर्ष 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में देश के युवा शक्ति के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया जाएगा।
5: रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक लाल किले से करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष के समारोह का एक प्रमुख आकर्षण वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव होगा। पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गान होगा। समारोह की दूसरी प्रमुख थीम युवा शक्ति विकसित भारत एट 2047 की यात्रा का नेतृत्व है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र की सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है जो नागरिकों को विकसित भारत निर्माण के प्रयास में एकजुट करता है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस वर्ष वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के कारण यह अभियान हर देशभक्त के लिए भावुक बन गया है। उन्होंने नागरिकों से तिरंगा फहराने और हरघरतिरंगा.com पर अपनी सेल्फी अपलोड करने का भी आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान 2026 और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में डोडा जिला प्रशासन ने तिरंगा रैली का आयोजन किया। तिरंगा रैली को उपायुक्त कृष्णलाल ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से झंडी दिखाकर रवाना किया। मणिपुर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत इम्फाल में बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में हजारों बाइक सवारों ने हिस्सा लिया।

0: सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVI के अंतर्गत 10 लाख प्रशिक्षण के लक्ष्य को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे भ्रामक दावे को खारिज कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय PIB के फैक्ट चेक इकाई ने स्पष्ट किया है कि PMKVI के तहत ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने पूरे सप्ताह पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
1: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
0: भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते हैं। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में अंगदान, मिथक तोड़ना, जीवन बचाना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस परिचर्चा में राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉ. अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डॉ. राजेश सिन्हा भाग लेंगे। वस्त्र मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हैंडलूम डिजाइनर्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया। इसमें डिजाइनर, बुनकर, नेते निर्माता और उद्योग से जुड़े लोग शामिल हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आश्वासन दिया, UPI लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद चलने देने की अपील की। कहा गृहमंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहली बार गायन। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और FIH हॉकी विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Parliament passes taxation bill to strengthen country's manufacturing ecosystem, attract investment and create jobs. Finance Minister Nirmala Sitharaman assures UPI transactions to remain free. Legislation granting legal recognition to digital banking records as evidence also gets nod from Parliament. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urges opposition to allow Lok Sabha to function for Home Minister Amit Shah's statement on student protest-related issues.

चुमुंग, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक श्री लाम त्रिंग, श्री कामे यांगफो, श्री हेमांता स्वर्गिरी और सुश्री शिखा डेका, ट्रांसमीटर में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक श्री न्यूटन बोरा और श्री अश्युत बर्मन के साथ मैं हूं हिंदी उद्घोषक लाम टाशी। समय रात्रि के 9:16 हुए हैं। श्रोताओं हमें आज्ञा दें। शुभरात्रि। जय हिंद।